FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, श्रावण माह, 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजे हैं, अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और

तापमान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी।

0: पे ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन एल्बर्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। गलती किए बिना कुछ नया नहीं सीखा जा सकता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है झरोखा। हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा।

अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। सात बजे भोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। इस प्रोग्राम में फिल्मों से लिए गए युगल गाने आपके लिए प्ले किए जाते हैं। आठ बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे, यानी समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। 8:30 प्रोग्राम आप सुनेंगे 8:30 पर। 9:30 पर आज का अखबार प्रोग्राम हम अपने स्टूडियो से आपके लिए पेश करेंगे। इस प्रोग्राम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हम प्ले करते हैं। समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे सुबह 10:00। 10:05 पर सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम 10:05 पर।

दिन में 11 बजे आपके लिए कार्यक्रम पेश किया जाएगा फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन। इस प्रोग्राम में बरसात के मौसम में अपने पाचन तंत्र का कैसे रखें ख्याल, इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर विशाल शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी PGI चंडीगढ़। कुछ सवाल आपके होंगे, कुछ हमारे होंगे।

लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे आपके लिए पेश करेंगे दिन में 11:30 पर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1:05 पर और 6:10 पर। दोपहर 2:15 पर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:00 शाम 6:00 रात 8:45 पर समाचार संध्या और रात 11:00 समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग आप सुनेंगे 5:30। 6:30 पर अमृत

0: नहीं, कार्यक्रम में श्रवण कीजिएगा शब्द। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके लिए पंजाबी गाने पेश किए जाएंगे। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुनिए सुरसांझ कार्यक्रम में कुछ पंजाबी गाने। झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: 10 बजे छाएगी, 10 बजे
0: 6:35 हुए हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।
1: प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 277।

सागर तट पर वानरों का विशाल समूह संपाति नामक गिद्ध से सीता के लंका की अशोक वाटिका में होने का पता पा चुका है। वृद्ध संपाति ने उन्हें यह भी बता दिया है कि जो सामने 400 कोस के विस्तार में फैले समुद्र को लांग सकेगा वही श्रीराम का कार्य संपन्न करने में सफल होगा। अपनी बात समाप्त कर जब गिद्ध चला गया तो वानरों को अपनी अक्षमता की प्रतीति हुई। ऋक्षराज जामवंत वृद्ध हो चुके हैं, उनके शरीर में पहले वाला बल नहीं है। अंगद को सागर पार चले जाने का आत्मविश्वास तो है परंतु लौट आने में संदेह है। किंतु वो तो वानर सेना के नायक हैं, उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है। जामवंत ने तब पवन पुत्र हनुमान के बल तथा सक्षमता का स्मरण दिलाया। बल में वे पवन के समान हैं और उसी प्रकार बुद्धिमान, विवेकशील तथा ज्ञान विज्ञान के भंडार। ऐसा कौन सा काम है जो वे नहीं कर सकते। ये सुनते ही हनुमान ने पर्वत सा आकार बना लिया। सोने जैसा वर्ण और शरीर का तेज उनकी सक्षमता का आभास देते हैं। उन्हें स्वयं अब इस बात का भान हुआ कि सामने लहराते सागर को वे खेल खेल में लांग सकते हैं।

0: प्रस्तुत है श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। इनसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। वर्षा चौमासा,
1: श्रोता मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं वर्षा चौमासा ये श्रृंखला। श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं शुभा जी से पूछने जा रही हूँ कि वे क्या सुना रही हैं, किस बारे में बात कर रही हैं। वैसे हम उनसे दादरा सुन चुके हैं, बंदिश की ठुमरी कल हमने सुनी है, और वर्षा चौमासा श्रृंखला में हम उसे इस तरह से सजा रहे हैं कि जिसके गीत में रचना में वर्षा का उल्लेख हो, बादर का, दादुर का, मोर पपीहे की बोली का, और उस सुंदरता को ढूंढने की तलाशने की भी एक कोशिश जारी है। तो शुभा जी, मैं श्रोता परिवार की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: और अब मैं अपने बोलने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, आपको सुनते हैं।
2: आज क्यों ना हम थोड़ा सा लोक संगीत की ओर देखें। उत्तर भारत के लोक संगीत में वर्षा ऋतु से संबंधित कई गीत प्रकार मिलते हैं। बारामासा मिलता है, छमासा मिलता है, चौमासा मिलता है, कजरी मिलती है
1: जी,
2: जिसे कजली भी कहते हैं
1: जी,
2: सावन भी है। कहते हैं, मलार भी कहते हैं, बिरना भी कहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वर्षा से संबंधित हैं, लेकिन कजरी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय रही है
1: जी।
2: अब कम सुनने में आती है, और जो दो ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ से कजरी का विशेष रूप से संबंध है, एक बनारस और एक मिर्जापुर। तो बनारसी कजरी और मिर्जापुरी कजरी बहुत ही जानी मानी हैं। कजरियों का संग्रह संगीतज्ञों के पास तो है ही है, उसके अतिरिक्त ऐसे कुछ लोग हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने कजरी के ऊपर बहुत लिखा है और आज भी मौजूद हैं इन दोनों जगहों में। तो बनारस से ही कुछ दूर एक जगह है रॉबर्ट्सगंज, वहाँ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनका उनके पास जो संग्रह है कजरी का वो बस सुनने लायक है। कजरी के अखाड़े होते थे, जिस प्रकार शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, उस तरह कजरी गाने की जो परंपराएं अलग अलग थी उन्हें अखाड़ा कहा जाता था
1: जी।
2: और इन जगहों पे दंगल होते थे, कजरी के दंगल होते थे, जिसमें रातों रात लोग गाते बजाते थे, और एक कजरी सुनाई उसी के मुकाबले में अपने दूसरी कजरी दूसरे दल ने सुनाई, तो ऐसा माहौल था।
1: और वर्षा हो रही है,
2: वर्षा के माहौल में ही होता था।
1: हाँ,
2: जी
1: हाँ,
2: बिल्कुल।
1: इस तरह ये मनोरंजन का कितना अनूठा सा एक स्वरूप है, रूप है
2: जी।
1: आज हम इसे भूलते जा रहे हैं।
2: कजरी का जो साहित्य है वो भी अलग अलग लोगों ने बहुत उसमें योगदान दिया है। तो ठेठ गांव की भाषाओं में तो मिलती ही हैं कजरियां, मगधी, मगध प्रांत में मगही कजरियां मिलती हैं, बिहार में मैथिली भी बोली जाती है, उस भाषा में भी

0: कजरी मिलती हैं
1: जो लोक भाषाएं
0: जी, ब्रज इत्यादि में भी मिलती हैं। और एक उसके साहित्य में, कजरी के साहित्य में बहुत बार देखते हैं कि पंक्ति के अंत में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, जैसे ननदी या
1: ननदिया,
0: सावर गोरिया या बिरना,
1: हाँ,
0: या फिर बलमु।
1: हाँ,
0: तो इन कजरी के हर पंक्ति में या हर दूसरी पंक्ति में ये एक इसी से समाप्ति होती है।
1: मतलब शायद वो जो रचना है वो बालम को कही गई है या ननदिया के साथ बात हो रही है, हो ननदिया हो बालमु, ऐसा कुछ
0: जी ऐसा
1: जी।
0: तो मैं आपके लिए एक कजरी प्रस्तुत करना चाहूंगी जो द्विज बलदेव जी ने लिखी है और जिसमें बलमु शब्द बार बार आता है
1: जी।
0: तो बोल इस प्रकार है, आई सावन की बहार मोरे बारे बलमो।
1: मोरे बारे,
0: हाँ
1: हाँ,
0: कम उम्र के हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: बाली उम्र के,
0: हाँ बाली
1: अच्छा,
0: उम्र
1: अच्छा,
0: के हैं।
1: हाँ।
0: आई सावन की बहार मोरे बारे बलमू, छाई घटा घनघोर बन में बोलन लागे मोर, ये तो प्रकृति चित्रण है ये, रिमझिम पनिया बरसे जोर मोरे बारे बलमू, धानी चद्दर सियाब, धानी रंग जो है वो सावन में भी पहना जाता है, धानी चद्दर सियाब और कैसा सारी सब्जी रंगाव, मतलब सब्ज साड़ी जो है सब्ज
1: हरी
0: हरी वो पहनेंगे क्योंकि चद्दर तो उसके ऊपर ओढ़ी जाती है, धानी चद्दर सियाब सारी सबुज रंगाब, वामे गोटा टकवाब, वामे गोटा टकवाब मोरे बारे बलमो।
1: अच्छा,
0: ऐसी तैयारी है सावन के लिए। हूं तो जई हो कुंज धाम सुने कजरी ललाम, वहां जाके कुंज धाम में कजरी सुनेंगे, जहां झूले राधा श्याम मोरे बारे बलमो।
1: तो कजरी ललाम, कितना सुंदर गठन है। हाँ।
0: और फिर उनकी छाप आती है, बलदेव क्यों उदास पुनी आई हो तोरे पास, मानो मोरा विश्वास मोरे बारे बलमो।
1: बहुत सुंदर
0: जी।
1: शोभा जी, ये जो कजरियां गाई जाती हैं या आज जो आप कजरी गाने जा रही हैं वो किसी राग में निबद्ध होती है या ये कुछ मिश्र रूप होता है?
0: नहीं जी, कजरी का की अलग अलग धुन होती हैं जो कि पारंपरिक प्रस्तुति उनकी होती
1: आपने
0: है।
1: आपने कहा है कि लोक संगीत की तरफ मुड़ते हैं तो ये लोक धुनें होती हैं।
0: जी बिल्कुल
1: जी।
0: और विशेष उनकी एक तर्ज होती हैं अलग अलग, लेकिन कजरी या होरी या झूला इत्यादि इनको शास्त्रीय संगीत गाने बजाने वाले लोगों ने भी इनकी ओर अपना ध्यान किया है। और तब क्या होता है कि उस धुन को या उस धुन को किंचित परिवर्तित करके उसको एक शास्त्रीय चोला पहना के भी प्रस्तुत किया जाता है
1: जी।
0: यहाँ मैंने ये कोशिश की है कि खमाज राग में इसको प्रस्तुत करूं, और है तो कजरी लेकिन उसको एक शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा।

0: वर्षा चौमासा प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: मन कर रहा है कि और भी कचरी सुनूं, और भी सुनूं, लेकिन अब कल के लिए इसे रख देते हैं। आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।
1: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: शुरुआत कर रहे हैं श्रीमती 420 फिल्म के इस गाने से। आवाज गीता दत्त की है, बोल जानेसार अख्तर के, संगीत ओपी नैयर का।

0: सजा ये जिंदगी है तू तो रहेगा।
1: श्रीमती 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज गीता दत्त की थी। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए

श्रीमती 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज गीता दत्त की थी। जानिसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें हैं, शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

पटरानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। लीजिए अब सुने भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फंटूश फिल्म का ये गाना किशोर कुमार की आवाज है, साहिल लुधियानवी के बोल, एस टी बर्मन की

0: आना जा।
1: फंडूश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी की रचना थी, एस टी बर्मन की तर्ज। आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में चलिए एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया गीत, शब्दकार हसरत जयपुरी, फिल्म का नाम था चोरी चोरी।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रही है महबूबा भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है,
0: फिल्म मेकर क्या होता है। कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत आप सुन रहे थे संगीतकार एन दत्ता, फिल्म का नाम था चंद्रकांता।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंद

0: आलम आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। शेवन रिजवे ने इस गीत को लिखा था, ए आर कुरैशी ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: लगाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें। नई सुई का ही प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। आप सभी को सविता सिंह का शुरुआत कर रहे हैं जाने अनजाने फिल्म के इस गाने से।

जाने अनजाने फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन। एक और गाना आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, मेला फिल्म से। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर टी बर्मन।

उर्मिला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर की आवाज़ों में, बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, धुन आर डी बर्मन ने बनाई थी।

0: आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का।
1: लाखों में एक फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं।

आवाजों में फिल्म लाखों में एक का ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, आर डी बर्मन ने धुन बनाई थी।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: जीवन की बगिया महकेगी लहकेगी, फिल्म तेरे मेरे सपने का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। नीरज ने इस गीत को लिखा था सचिन देव बर्मन ने। इस गीत की धुन बनाई थी, आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
2: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे।
4: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
4: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
6: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
2: वो कॉमिक क्रिएटर है।
8: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
8: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
8: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।

संगीत मदन मोहन का। कैफे आजमी के बोल आप सुन रहे हैं।

परवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, कैफी आजमी की बोल थे, तर्ज थी मदन मोहन की, हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम समाप्त करने की आज यही दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलेंगे अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
4: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
6: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीषा।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार

0: प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे

0: घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर एक के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
2: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार के ओर से कहना चाहता हूँ, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक महासभा के सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
1: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
3: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
5: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया।

0: प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
1: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H1B और L1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1,500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: आइए सुने त्रिवेणी।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत। ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी एक कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए। और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सावरिया तक पहुंचा दो ना।

किसी दूसरे से खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना, खत के भीतर रखा।

आ गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल। ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहां कोई उसे देख ना पाए। कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना, लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहां। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो

आज के इस युग में, डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है। लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला? डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि इसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो,

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा.
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को.
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान.
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया. उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे. रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल. नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है. तो मतलब काफी वेरिएशन थी.
4: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास.
5: HP TDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
4: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
5: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट.
4: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुने.
5: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
4: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें.

SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.

0: सूर्यवंशी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। तनिष्क बागची और आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा। संगीतकार थे तनिष्क बागची और विजू शाह।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

जावेद अली और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निशांत खान का था, फिल्म का नाम था ये साली जिंदगी। सन ऑफ सरदार 2 फिल्म का ये गीत नेहा कक्कर की आवाज में।

0: ये सेवा देश की सुरीली धड़कन, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी

0: जिंदगी की कहानी सुनाने। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
0: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे

मीत ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में कुमार का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म रॉय से। मीत ब्रदर्स ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज दोस्तों जन्मदिन है बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का। अपने ग्लैमरस अंदाज, शानदार डांस और चुलबुले अभिनय से उन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। जन्मदिन के इस खास मौके पर विविध भारती परिवार की ओर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

0: किक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मेट ब्रदर्स अनजान, सुमित सेठी एंड प्रिंस की आवाजें थी। शब्बीर अहमद ने इस गीत को विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

मुबारका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मीका सिंह और साथियों की आवाजें थी कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था। आज वर्ल्ड स्टील पैन दिवस है, विश्व स्टील पैन दिवस हर साल 11 अगस्त को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। स्टील पैन दुनिया का अनोखा

एक वाद्य यंत्र है जिसे पैन या स्टील ड्रम भी कहते हैं। इस वाद्य यंत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व, इसकी परंपरा को मान्यता देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। स्टील पैन की उत्पत्ति कैरेबियाई सागर में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो में हुई और इसे 20वीं सदी में विकसित किया गया। ये वाद्य यंत्र स्टील के ड्रम से तैयार किया जाता है और इसकी ध्वनि में एक अलग ही मिठास और ऊर्जा महसूस होती है। इसकी खासियत यह है कि साधारण दिखाई देने वाली धातु को कलाकार अपने हुनर से, अपनी कला से मधुर संगीत में बदल देते हैं। स्टील पैन का विकास कैरेबियाई और वहां के रचना धर्मिता से जुड़ा है। धीरे धीरे इसकी धुनें द्वीपीय देश त्रिनिदाद और टोबैगो की सीमाओं से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों तक

チ。आज स्टील पैन का इस्तेमाल पारंपरिक और आधुनिक संगीत में भी किया जाता है। इस दिवस को मनाने का संदेश यह है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, अथाह है संगीत, सागर की तरह, नदी की तरह, धरती की तरह, आकाश की तरह। एक ध्वनि पूरी दुनिया के दिलों को जोड़ता है। ये तमाशा फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज में। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर चित्रलोक कार्यक्रम में समय सुन रहे हैं।

0: मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
3: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
4: सखी सहेली।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
6: मैं अगले दिन नाचो तो वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: चलिए एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश से चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी।

बागी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी मोनाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स के, कुमार के बोल थे। मीत ब्रदर्स का संगीत था।

0: फिल्म आर आर आर का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी विशाल मिश्रा, राहुल सिपलीगुंज के, रिया मुखर्जी ने बोल लिखे थे, एमएम क्रीम का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश जो

0: हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऐश किंग और शाशा तिरुपति की ये आवाजें थीं। संगीतकार थे तनिष्क बागचे। इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आप स्वस्थ और समृद्ध रहिए। नमस्कार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आज का अखबार।
1: आज का अखबार।
4: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। आपसे लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे और अखबारों से ली गई जानकारी आपसे साझी करेंगे, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स भी प्ले करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब भी बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो मौसम की बात तो होती है। आप भी जब किसी को फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो उससे ये बात तो आप डिस्कस करते ही हैं कि भाई आपके यहाँ बारिश हुई, हमारे यहाँ तो बारिश हुई, हल्की हुई, बादल आए फिर चले गए। यानी इस तरह की बात जो है, मौसम हम पर तारी रहता है कि मौसम से हमारी दिनचर्या जुड़ी हुई है, हमारा मूड, हमारा सब कुछ मौसम से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले मौसम की बात कर लेते हैं। अगस्त का जो महीना है, मानसून का महीना, इस महीने बारिश होती भी है, नहीं भी होती, हल्की होती है, भारी होती है। लेकिन इस मौसम में सावन का जो महीना है, ख़ास तौर से

वो जप तप का महीना भी है। ये जो महीना है हमारी, जो आज़ादी से जुड़ा हुआ महीना है, ये महीना अपने आप में बहुत ख़ास है। तो इस महीने में आने वाले मौसम की बात कर लें तो मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग का ये कहना है कि एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। 11 से 13 अगस्त को चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की विशेष चेतावनी दी गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है। तो ये है मौसम। और अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त का महीना भारतीय इतिहास में, हमारे दिलों में एक खास जगह रखता है। आज़ादी की लहर को इसी महीने एक नई दिशा मिली। इसी महीने यानी 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ, अपना प्यारा तिरंगा खुले गगन तले लहराया। तिरंगे तले हर भारतवासी एक, चाहे कोई भी धर्म हो, भाषा हो, रहन सहन हो, हम सब भारतीय इसी भावना के साथ अपने देश की खातिर हर पल हर घड़ी तैयार। फिजाओं में आज़ादी की महक महक रही है। दोस्तों, 15 अगस्त का ऐतिहासिक दिन समीप आ रहा है, लेकिन हर घर तिरंगा अभियान जो है वो देश भर में चल निकला है। और ये जो अभियान है 17 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस अभियान के दौरान हमें क्या करना है, हमें अपने अपने घर पर, घर की छत पर, अपनी खिड़की पर, अपने आंगन में, अपने अपने संस्थानों में तिरंगा लहराना है। लहराता तिरंगा हमारे दिलों को गर्व से भर देता है। ये राष्ट्रीय गौरव है हम सब के लिए। शहर में भी कई जगह दोस्तों तिरंगे से जुड़े जो हैं कार्यक्रम चल रहे हैं। सबसे पहले सेक्टर 22 की बात करें तो 60x60 फीट के तिरंगे से सजा सेक्टर 22 में जो है तिरंगा, हर घर तिरंगा का दिया गया संदेश, हर दिल में तिरंगा, हर कदम पर देशभक्ति। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने किया। और सेक्टर 32 के GGDSD कॉलेज में देशभक्ति कार्यक्रम हुआ। विशेष कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। हर घर तिरंगा से गूंजा चंडीगढ़। तिरंगा यात्रा में 165 लोगों ने लिया भाग। CSCA के चैप्टर राइजिंग सन की मासिक बैठक में ये जो है 165 सदस्यों ने यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा, उसमें शामिल हुए। तो इस तरह से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान जो है वो चल रहा है। आप भी इस अभियान में शामिल होइए और अपने घर आंगन को तिरंगे से सजाइए।

तिरंगा हमारी आन बान और शान। वेलकम बैक दोस्तों, इस प्रोग्राम आज का अखबार में हम फिर आपके साथ हैं। अगस्त का महीना, जैसा कि हमने कहा कि सावन का ये महीना, जप तप आराधना से जुड़ा हुआ ये महीना, पूरे भक्ति भाव का ये महीना होता है और इस महीने कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। कांवड़िए पूरे अपने दमखम के साथ, आस्था के साथ, भक्ति भाव के साथ मीलों लंबी यात्रा करते हैं और गंगा जल लेकर लौटते हैं। कांवड़ यात्रा के आखिरी दिन यानी कल सोमवार को पवित्र नदियों का जल लेकर लौटे कांवड़ यात्रियों की भारी भीड़ सड़कों पर देखने को मिली। सावन शिवरात्रि से पहले हरिद्वार से भी पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने घरों की ओर लौटे। इस दौरान कई अनूठी झांकियां चर्चा में रहीं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। पिछले साल 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे थे और जैसे कि हमने कहा कि आपको इस दौरान कई अनूठी झांकियां देखने को मिली, तो इन झांकियों की भव्य तस्वीरें आज के अखबारों में हैं। कहीं त्रिशूल के साथ मनोहारी प्रतिमा नजर आई, कहीं शिवजी का अर्ध नारीश्वर स्वरूप नजर आया, कहीं शिव के साथ शक्ति नजर आई, 12 ज्योतिर्लिंगों की जगमगाती झांकी भी नजर आई। पूरा शिव मंदिर ही लेकर चल पड़े कांवड़िए।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं अपने रेडियो सेट के साथ साथ। इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। और अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। झारखंड में विधानसभा के पास युवाओं पर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। संसद में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार सहमत, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे, विपक्ष को सुनना पड़ेगा, ये कहा केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामलों में जांच शुरू की। और पर्यटन से जुड़ी खबर है, अमृतसर अटारी सीमा में बॉर्डर टूरिज्म की तैयारी, फिरोजपुर के हुसैनीवाला में बनेगी कल्चरल एंड हेरिटेज स्ट्रीट। राम मंदिर के सीईओ के लिए 18 उम्मीदवारों का होगा साक्षात्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मूल्य चुकाए बिना सेल डीड हुई तो भी वैध।

यूजीसी की उत्तर कुंजी इसी हफ्ते आएगी। और मौसम की बात करें तो देश भर के मौसम से की खबर है कि बारिश का कहर उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल में जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली में बैली ब्रिज बहा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर्मी लापता, मध्य प्रदेश में 9 लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कोलंबिया में भूकंप से 82 लोगों की मौत हो गई है। और चीन से जुड़ी खबर है, इंसान के व्यवहार को समझने के लिए चीन ने बनाया धरती जैसा एआई समाज। अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर नजर दौड़ाएं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई से लेन देन पर रेहड़ी पटरी वालों को नहीं देना होगा कोई भी शुल्क, केवल चुनिंदा श्रेणियों में ये लागू। ₹1601 सीरीज वाले नंबर से आएगी बिजली गैस कूरियर की कॉल। और कम शून्य TDS प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए जल्द आएंगे आयकर नियम। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब एक गाना प्ले करते हैं, उसके बाद आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में।

वेलकम बैक दोस्तों, अब एक नज़र खेलों की दुनिया पर। श्रीलंका 11 के खिलाफ वार्म अप मैच के बाद भी भारत को प्लेइंग 11 के लिए करना होगा विचार। 11 में से 8 खिलाड़ी ही तय, नंबर 7 और पेसर को लेकर माथा पच्ची। और चेस की दुनिया की बात करें तो चेस की दुनिया में ब्रिटेन में चैंपियन बने भारतीय मूल के दो खिलाड़ी श्रेयस और 11 साल की बोधना। हॉकी की बात करें तो 15 से 29 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में खेला जाएगा मेगा इवेंट। इतिहास में पहली बार होगा दो देशों में हॉकी वर्ल्ड कप एक ही तारीख पर पुरुष महिला मैच होंगे। क्वार्टर फाइनल राउंड बंद, इस साल पाकिस्तान से तीसरी बार भिड़ेगा भारत। और दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात रोचक किस्सों और प्रेरणादायक पलों से भरी रही। प्रधानमंत्री ने जहां मीराबाई चानू से उनकी भावुक मेडल सेरेमनी पर बात की, वहीं बॉक्सर लवलीना और नरेंद्र बेरवाल के दिलचस्प अनुभव भी सुने। 90 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण विजेता मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल ने 2015 के मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स का किस्सा भी सुनाया। उन्होंने गेम्स में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को हराया था। मेडिकल रूम में इलाज के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी बोला, भाईजान आपका नाम नरेंद्र है, कोच का भी नरेंद्र है और प्रधानमंत्री का नाम भी नरेंद्र।

0: भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब इस प्रोग्राम में चलते चलते कुछ खबरें आपसे शेयर करें, रीजनल और लोकल। सबसे पहले पंजाब की बात करें तो विधानसभा में 9 बिल पास हुए हैं। स्कूल फीस में बढ़ोतरी 5% तक ही। 65,000 कर्मचारी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। पंजाब में 13 अगस्त को तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। लाइब्रेरियन के 785 पद भरेगी पंजाब सरकार। और हरियाणा की बात करें तो करनाल में MSME विभाग की ओर से आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 55,000 करोड़ के निवेश से 5 लाख को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में कचरा फेंका तो कैमरा पकड़ेगा, ऑनलाइन कट जाएगा चालान। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए, हिसार से होगी इसकी शुरुआत। और हिमाचल की बात करें तो माता चिंतपूर्णी में श्रावण अष्टमी मेला 13 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगा। हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला दम्भोटा पुल खुल गया, संपर्क बहाल हुआ 3 साल बाद। विश्व धरोहर काल का शिमला रेल मार्ग पर 160 कैमरों का होगा पहरा। और लोकल हेडलाइंस में जीरकपुर के गाजीपुर में 50 दुर्लभ पंजाबी वृक्ष प्रजातियों का संरक्षण शुरू। सुल्तानपुर कालका के बीच दौड़ेगी नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, सप्ताह में 3 दिन मिलेगी सीधी रेल सेवा। चंडीगढ़ के PGI सारंगपुर मार्ग पर जाम से मुक्ति देगा 80 करोड़ का फ्लाईओवर। ये तो थी कुछ रीजनल और लोकल हेडलाइंस। अब आज का अखबार कार्यक्रम समाप्त करने के अपने साथ ही अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। नमस्कार।
3: आज का अखबार।
2: अभी आप सुन रहे थे आज का अखबार कार्यक्रम। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 10 बजे हैं, अब समाचार होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
5: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और

0: सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का. स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ. उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है. इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है.
1: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं. गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं. इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं. भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है. अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है. श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही. उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की कमी थी. श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है. झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया. ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है. राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो तो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है. कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ब्यौरा हमारी संवाददाता से.
2: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए. आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है. मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है. कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
1: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है. बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी. मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर.
4: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर. फोन 8950632224.

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: 10:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं गीतों का ये कार्यक्रम। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक फिल्मी गाना प्ले करेंगे। मन्ना डे, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में ये गाना है। मानस मुखर्जी के संगीत में ये गाना है और ये फिल्म है शायद।

0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
1: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
1: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
1: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।

0: अभी आपने आदित्य रेखड़ी और रोचक कोहली की आवाजों में ये गीत सुना, नॉन फिल्मी गीत।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: अब आपको सुनवा रहे हैं एक फिल्मी गजल, कलाकार हैं अनवर।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है प्रोग्राम सुरीला सफर, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों रचनाओं का ये कार्यक्रम सफर सुरीला सा, ये है कार्यक्रम हमारा। और ये कार्यक्रम आप हर मंगलवार और बृहस्पतिवार को आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनते हैं। आप अपने रेडियो सेट के साथ साथ हमें हमारी ऐप न्यूज़ ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद दिन में 11 बजे फोन इन प्रोग्राम FM लाइफलाइन होगा। इस प्रोग्राम में आज का विषय है बरसात के मौसम में अपने पाचन तंत्र का कैसे रखें ध्यान। इस विषय पर डॉक्टर एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी PGI चंडीगढ़ डॉक्टर विशाल शर्मा आपके सवालों के जवाब देंगे। कुछ हमारे, कुछ सवाल आपके। और दिन में 11:30 पर लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हैं मित्रा दे पेश किया जाएगा। फिलहाल सफर सुरीला सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, एक और फिल्मी गजल आपको सुनवाएं मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। ये फिल्म है इज्जत।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को अभी आपने इज्जत फिल्म से सुना।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: नॉन फिल्मी गाने में ये गाना है अंकित तिवारी की आवाज में।

House. अभी आपने अंकित तिवारी को सुना गुनगुनाते चले मौसम, ये गाना था गाने के बोल थे। और अब बारी है फिल्मी गाने की।

मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में अभी आपने दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म का टाइटल गीत आपने सुना। संगीत था सोनिक ओमी का। नॉन फिल्मी गाने में ये गाना है अरमान मलिक की आवाज में।

बाजू बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे।

अभी आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत सुना, किशोर कुमार, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में।

अभी आपने ये गैर फिल्मी गजल सुनी चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की आवाजों में। अब प्रोग्राम के आखिर में ये है फिल्मी रचना सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में।

0: अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अभी आपने इस फिल्म से सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत सुना। इसी गीत के साथ ही अब आज का सफ़र सुरीला सा, कुछ फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाओं का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला प्रोग्राम है FM लाइफलाइन, आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्ते लागू।
2: FM लाइफलाइन लाइफलाइन लाइफलाइन।
0: नमस्कार साथियों, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अनिल पुंज। आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर विशाल शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी PGI चंडीगढ़। डॉक्टर विशाल शर्मा आज इस प्रोग्राम में वर्षा ऋतु में पाचन तंत्र का ध्यान किस तरह से रखा जाए, कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कौन कौन से संक्रमण जो हैं हमें आकर घेर लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इनका ख्याल किस तरह से रखना है, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर विशाल शर्मा, प्रोग्राम FM लाइफलाइन में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद पूंजी, कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का मौका दिया, बहुत बहुत आभार
0: जी। और डॉक्टर विशाल, PGI से जब डॉक्टर इस प्रोग्राम में आते हैं और इतनी व्यस्तता होने के बावजूद अपने समय में से समय निकालकर यहाँ पहुँचते हैं, और इससे पता चलता है कि आपको देशवासियों के सेहत का कितना ख्याल है कि कोई भी मंच मिले आप वहाँ इसके लिए तुरंत पहुँच जाते हैं
3: जी। इससे हमारी अपनी सेहत का भी फायदा है कि अगर ये संक्रमण कम हो और हम इनको प्रिवेंट कर पाएं तो PGI की भीड़ भी थोड़ी कम हो पाए।

0: जी बिल्कुल सही है, और ये बहुत अच्छी बात है इस प्रोग्राम की डॉक्टर साहब की, घर बैठे बिठाए हमारे तमाम सुनने वालों को जानकारी मिल जाती है और एक रास्ता मिलता है। हालांकि ट्रीटमेंट तो पीजी में आकर ही होगा, लेकिन एक रास्ता मिल जाता है।
1: नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा
0: जी,
1: लेकिन हमें मेडिसिन जब पढ़ाई जाती है तो उसका एक जो सिद्धांत बताया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
0: जी,
1: तो उस संक्रमण को पनपने ही ना दें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता,
0: बचाव में ही बचाव है।
1: बचाव।
0: तो डॉक्टर साहब आज का जो टॉपिक है हमारा वो बरसात में अपने पाचन तंत्र का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और विस्तार से तमाम बातों के बारे में जानेंगे। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत कुछ सोशल मीडिया में चलता है, बहुत कुछ देखने सुनने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे सामने इस टॉपिक के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हैं। तो डॉक्टर विशाल ये बताइए कि पाचन तंत्र को लेकर मॉनसून के मौसम में खास तौर से क्यों तवज्जो दी जाती है?
1: देखिए, मॉनसून का जहां तक ताल्लुक है, एक तो इस समय तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है और दूसरा नमी ज्यादा,
0: बहुत ज्यादा होती
1: है।
0: जी जी।
1: और ऐसी स्थिति में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि वो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया भी हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, वायरसेस होते हैं, इनके पनपने और इनके मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता होती है वो काफी बढ़ जाती है।
0: यानी परजीवियों का ये खास मौसम है
1: जी, उनके लिए बेहतर मौसम है और हमारे लिए खतरे की घंटी है।
0: घंटी है, तो इसीलिए पाचन तंत्र की ज्यादा बात होती है
1: जी।
0: तो डॉक्टर साहब, इस मौसम में कौन कौन सी वो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, संक्रमण हैं जो हमें घेर सकते हैं और अक्सर घेर लेते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक हमारे श्रोता ऑनलाइन है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ेंगे, तो पहले उनसे बात कर लेते हैं
1: जी।
0: प्रोग्राम FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है जी।
2: नमस्कार
0: जी। नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: सर, मैं किरण शिमला कुफरी से।
0: अच्छा, कुफरी शिमला से, तो इतनी दूर से आपने इस प्रोग्राम में बात की, हमें अच्छा लग रहा है। किरण जी, तो आज इस प्रोग्राम का टॉपिक आपको मालूम है?
2: जी सर।
0: तो डॉक्टर विशाल हमारे साथ हैं, आप उनसे अपना सवाल कीजिए।
2: जी सर। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी।
2: सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मतलब जैसे गैस्ट्रिक पेट में बनती है
0: जी, गैस
2: जी सर, जैसे मतलब गैस खाली पेट होते है, मतलब खाली पेट से जब चाय पीते है तब गैस बन जाती है।
0: अच्छा
2: जी।
0: हाँ, और बताइए।
2: और सर दूसरी बात ये है, पेट की स्पाइन साइड मतलब पेन शुरू हो जाती है।
0: पेट की बाईं तरफ आपके दर्द होती है और सुबह उठते ही आप खाली पेट चाय पीती हैं, और बताइए।
2: और सर जैसे मतलब मैं मोटापा की बात करना चाहूँगी सबसे ज्यादा तो।
0: अच्छा, तो पहले जो दो खास बातें हैं उनके बारे में डॉक्टर विशाल आपको बता दें।
1: तो जहाँ तक गैस बनने की बात है, ये काफ़ी कारणों से बन सकती है, और जहाँ तक चाय का सवाल है, चाय और कॉफ़ी अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से या खाली पेट इनको लेने से भी जलन, जिसको हम अंग्रेजी में डिस्पेप्सिया बोल देते हैं, वो हो सकता है।
2: तो सर मतलब हम अवॉइड करना चाहिए
1: जी, अधिक चाय अवॉइड करनी चाहिए, और अगर हो सके तो कुछ खाने के बाद ही लें। इसके अलावा अगर कोई और भी ट्रिगर है तो उसको भी अवॉइड करें। इसके बावजूद अगर बना रहता है तो हो सकता है कि कई बार कुछ कीटाणुओं से होता है, एंडोस्कोपी की आवश्यकता पड़ सकती है, तब आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे संपर्क करें।
0: और किरण जी, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि खाली पेट चाय मत लीजिए, कुछ खाने के बाद चाय को लीजिए।
2: सर मतलब जैसे ब्लैक टी हो तो वो तो पी सकते हैं।
0: नहीं नहीं, उन्होंने पीने के लिए कुछ मना नहीं किया है, लेकिन खाली पेट मत लें आप। एक डॉक्टर साहब इन्होंने बताया था कि बाईं तरफ इनके दर्द होता है पेट में,
1: वो तो देखना पड़ेगा कि उसका क्या कारण है, क्योंकि दर्द जो है वो आम तौर पे किसी कारण से ही होता है, तो इसके लिए तो बेहतर रहेगा कि ये किसी को दिखाएं।
0: जी
2: सर, मैंने दिखाया था, अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, बल्कि उसमें नॉर्मल बताया
1: जी। सारी चीजें जो है वो अल्ट्रासाउंड से कई बार नहीं पकड़ी जाती है, हो सकता है कि ये दोनों चीजों को देखते हुए एंडोस्कोपी या इसके आगे सीटी स्कैन आदि की आवश्यकता पड़े, पर उसके लिए बेहतर यही होगा कि आप किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में संपर्क करें।
0: आप ऐसा कीजिए किरण जी, शिमला में जो IGMC है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है, वहाँ पे दिखाइए पहले। हाँ, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप पीजे भी दिखा सकती हैं, लेकिन आप दूर बहुत रहती हैं, तो सबसे पहले अपने नजदीक किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाइए।
2: सर अगर हमें चंडीगढ़ आना पड़े तो कहाँ?
0: हाँ, चंडीगढ़ आना पड़े तो डॉक्टर साहब आप ही बता दीजिए।
1: पीजीआई में हमारी जो गैस्ट्रो की OPD है, मंगलवार, वीरवार और शुक्रवार को लगती है।
2: ये कौन से नंबर पे होगी?
1: ये आप वहाँ आ जाएंगे तो कार्ड बन जाएगा, वो उस पे नंबर होगा।
2: ओके।
0: आप ऐसा कीजिए, सुबह सवेरे आ जाइए, कार्ड बनवाइए, उसके बाद आपको अपने आप इस

0: डिपार्टमेंट में पहुंचा दिया जाएगा।
1: ओके सर।
0: हाँ, और अपना ख्याल रखिएगा।
1: ओके सर।
0: थैंक यू वेरी मच किरण जी।
1: थैंक यू सर।
0: एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी।
2: सर नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
2: वरिंदर सिंह बोल रहा हूँ खन्ना।
0: वरिंदर सिंह जी खन्ना से। डॉक्टर विशाल हमारे साथ बैठे हैं प्रोग्राम में। पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित आपका कोई सवाल है आप उनसे कीजिए।
2: हाँ सर।
3: नमस्कार जी, बताइए।
2: सर नमस्कार जी। सर ना मेरे सिस्टर में पेट में प्रॉब्लम है।

0: पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित आपका कोई सवाल है आप उनसे कीजिए।
1: हाँ सर।
2: नमस्कार जी, बताइए।
1: हाँ सर नमस्कार जी। सर ना मेरे सिस्टर में पेट में प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स की नाड़ तो वो नहीं है, हमने पीजीआई में दिखाया है पिछले भी।
2: हाँ जी।
1: ते सर वो दर्द ना कभी कभी सुबह के टाइम में ज्यादा होता है, बहुत तीखा होता है, उसका क्या कारण है?
2: नहीं देखिए, दर्द के तो कई कारण हो सकते हैं।
1: हाँ जी।
2: आपको अगर कुछ बताया गया है और पीजीआई में आपका फॉलोअप चल रहा है तो बेहतर है कि वहीं पे उसके लिए फॉलोअप करें।
1: सर जो टेली ओपीडी होती है सर वो किस दिन होती है?
2: टेली ओपीडी अलग से आपको उसके लिए ऑनलाइन ही वो लेना पड़ेगा,
0: रजिस्ट्रेशन
2: करनी पड़ेगी।
1: अच्छा सर।
2: हाँ जी
1: ठीक है जी।
0: शुक्रिया कॉल के लिए।
3: नमस्कार सर। सर मैं अंकिता बात कर रही हूँ पंचकुला से।
0: अंकिता
3: जी, सेक्टर 9 से।
0: सेक्टर 9 से।
3: हम कौन कौन सी चीजें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं
0: अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए?
3: जी जी
0: जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहती हैं अंकिता जी कि हम अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए या उसे ठीक ठाक रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खास तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं?
2: तो अगर देखा जाए पाचन तंत्र की मजबूती का अर्थ ये है कि हमारी आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या बढ़ानी है और जो खराब बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या कम करनी है। और जो देखा गया है फल सब्जियाँ फर्मेंटेड फूड्स दही लस्सी छाछ ये सारी चीज़ें आम तौर पे फूड बैक्टीरिया की बढ़ोतरी करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को सुदृढ़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम चिकनाई ज़्यादा वाला खाना, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स बीवरेजेस जो होते हैं, फास्ट फूड प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कि पैक्ड फूड होता है
0: जी,
2: इनके सेवन से हमारी आंत जो है वो खराब होने का या उसकी जो शक्ति है वो कम होने का चांस होता है।
0: जी वो कमजोर होती है।
2: जी
0: जी, क्योंकि उसको ज्यादा काम करना पड़ता है,
2: ज्यादा काम भी करना पड़ता है और हमारे पेट के अंदर एक बैरियर होता है जो कि गट बैरियर जिसे बोलते हैं
0: जी,
2: जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह से हमें बचाता है और इस बैरियर को सुदृढ़ करने के लिए जो मैंने खाद्य पदार्थ बताए हैं वो हेल्पफुल होते हैं।
0: तो अंकिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
3: जी जी।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो थे हमारे श्रोता, अभी हो सकता और भी आए प्रोग्राम में क्योंकि हम इस चीज़ की पब्लिसिटी करते हैं कि आज हमारे साथ डॉक्टर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे श्रोता जो हैं वो सवाल करेंगे, लेकिन बीच बीच में हम आपसे अपने जो सवाल हैं वो भी करते रहेंगे। तो बात हमारी हो रही थी कि बरसात के मौसम में किस तरह की आमतौर से बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, संक्रमण देखने को मिलते हैं।
2: तो देखिए इसमें आम तौर पर जो संक्रमण देखने को मिलते हैं मुख्य तौर पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके कारण पेट में इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
2: इसमें मुख्य तौर पर आपने जो सुना होगा हैजा फैल गया, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लडिंग जैसी सिचुएशन होती है, साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाता है तो इस प्रकार के एपिडेमिक फैल सकते हैं जिसको कॉलरा कहा जाता है।
0: पानी होते हुए भी पानी साफ मिलना मुश्किल हो जाता है।
2: जी जी। और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एक डायरिया होता है, दस्त लगते हैं
0: जी,
2: जिसमें शरीर के अंदर पानी और नमक की बहुत भारी कमी हो जाती है।
0: जी।
2: इसके अलावा अगर हम देखें बैक्टीरिया के कारण तो सब जानते हैं कि टाइफाइड फीवर हो जाता है, हालांकि ये होता तो इन्फेक्शन आंत से है पर पूरे शरीर में ये फैल सकता है, बहुत ज़्यादा बुखार आता है और ये जीवन के लिए भी कभी कभी खतरा बन जाता है। इसके अलावा कुछ जो और बैक्टीरिया होते हैं वो जैसे शाइगेला होता है जिसमें डाइसेंट्री पेचिश यानी खूनी दस्त ये हो सकते हैं,
0: वो लग जाते हैं
2: जी, वो शाइगेला के कारण हो सकते हैं। बैक्टीरिया के अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन भी, जैसे कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो डायरिया कर सकते हैं और कुछ वायरसेस जैसे आपने हेपेटाइटिस के बारे में तो सुना होगा, तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो खाने की चीज़ों से फैलते हैं और ये भी इस दौरान जब खाना दूषित होने का ज़्यादा चांस है
0: जी,
2: तो वायरल हेपेटाइटिस ए और ई भी बढ़ जाते हैं जिनके कारण पीलिया हो सकता है और कुछ एक लोगों को लिवर फेलियर भी हो सकता है,
0: यानी गंदगी की वजह से
2: जी,
0: चाहे वो पानी में है
2: जी जी
0: या फल में है सब्जियों में है
2: जी जी,
0: तो ये जो बीमारियां वो हो सकती हैं।
2: तीसरा जो है जिसे हम पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, तो उसमें एक अमीबा होता है जिससे भी पेचिस या अमीबिक डाइसेंट्री कहते हैं वो हो सकती है और इसमें भी बुखार के साथ दस्त लगते हैं जिसमें खून आ सकता है। तो मोटे तौर पर ये बीमारियां मॉनसून के समय बारिश के समय बढ़ जाती हैं,
0: इनका खतरा ज्यादा बना रहता है, इसीलिए इस मौसम में कहते हैं कि थोड़ा कम खाओ और थोड़ा संभल के खाओ
2: जी, साफ खाओ।
0: लेकिन डॉक्टर साहब ये चीज बताइए, अब आजकल ऐसी लाइफ हो गई

0: कि घर बनाने का समय नहीं है, कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, ये भी अपने आप में हकीकत है, इसे भी हम इनकार नहीं कर सकते। तो ना चाहते हुए भी, जो तो घर बना सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, ना चाहते हुए भी बाहर खाना पड़ता है। अब मानसून सीजन में तो भूखा नहीं रहा जाएगा, तो ऐसे में बाहर अगर खाना पड़े तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: सबसे पहले पानी, सबसे ज्यादा जो संक्रमण होते हैं वो दूषित पानी के कारण होते हैं। तो घर के बाहर कभी भी पानी लेना पड़े तो ऐसा पानी लीजिए जो या तो आपको स्पष्टता से पता है कि ये साफ है,
0: ये सही है
1: जी जी। दूसरा, अगर हो सके तो घर से ही पानी लेके चलें, उबला हुआ और उसको ठंडा करके घर से पानी अपने साथ लेके चलें। जहां तक खाने का सवाल है, जो भी चीज पकी हुई नहीं है, कच्ची है
0: जी,
1: जैसे कटा हुआ सैलेड है मान लीजिए बाहर मिल रहा है, कोई चटनी है, इस तरह की चीजों से संक्रमण होने का बहुत ज्यादा चांस है। उससे ज्यादा अच्छा है कि कोई उबली हुई चीज है, मान लीजिए उबले हुए चावल हैं जी, या दाल है आपके सामने उबली है,
0: वहां खतरा कम है,
1: वहां खतरा कम है।
0: और आपने सही कहा कि जो कटी हुई चीज है या कोई फल है, कोई सब्जी है मार्केट में, अब हमें नहीं पता कि किन हाथों से वो काटी गई है,
1: किन हाथों से, किस पानी से साफ,
0: किस पानी से साफ की और कितनी देर से वो बाहर पड़ी।
1: एक और चीज है कि हम कई बार सोचते हैं कि रेफ्रिजरेशन जो है, कि जिस चीज को फ्रीज कर दिया गया है वो सेफ हो गई है, ऐसा नहीं है।
0: अच्छा
1: जी, क्योंकि काफी सारे जो ये कीटाणु होते हैं ये इसको टॉलरेट कर लेते हैं, और इसलिए बेहतर है कि ये चीजें बॉयल करके, हीट करके उसके बाद ही ली जाएं।
0: मतलब इस मौसम में, वर्षा ऋतु में उबालना जो है वो सबसे सेफेस्ट है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: पानी है तो उबाल के ठंडा करके उसे,
1: पानी, दूध,
0: कुछ भी है
1: जी,
0: जो भी लिक्विड है
1: बिल्कुल,
0: आप उसे उबाल कर ठंडा करके पिए तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मुझे कैसे पता चले कि मेरा पाचन तंत्र कमजोर है?
1: इसका देखिए कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं बना है, ये टेस्ट
0: भी आप बहुत सारे मरीज देखते होंगे, किसी न किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचे होंगे आप।
1: तो इसमें यही है कि जिसको कुछ भी खाने के बाद बहुत ज्यादा दस्त लग जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, जलन बननी शुरू हो जाए, बहुत ज्यादा गैस बननी शुरू हो जाए, तो ये आमतौर पे माना जाता है कि इनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है।
0: मतलब कुछ भी खाने के बाद वो शिकायत करने लग जाए, वो प्रॉपर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा,
1: शायद वो काम नहीं कर रहा।
0: अच्छा, आईबीएस की जो समस्या है उस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
1: तो आईबीएस जो है ये तो क्रॉनिक बीमारी होती है
0: जी।
1: इसमें क्या है, दो तरह का ये बताया जाता है, एक होता है कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट और एक डायरिया प्रीडोमिनेंट, यानी कि एक किस्म होती है जिसमें दस्त थोड़े या लूज स्टूल होता है और साथ में हल्का सा पेट में दर्द रहता है, और दूसरे में कब्ज रहती है और साथ में पेट में दर्द रहता है। ये काफी कॉमन बीमारी है, और कई बार ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं, हमारे बैक्टीरिया में जो परिवर्तन आता है इंटेस्टाइन में, शायद उसके कारण ये बीमारी होती है।
0: अच्छा, कुछ लोगों को ये शिकायत रहती है कि जनाब मैं जैसे खाना खाता हूँ मुझे तुरंत जो है शौच के लिए जाना पड़ता है
1: जी,
0: तो उसका कारण
1: आम तौर पर आईबीएस होता है। हालांकि पहले कोई इन्फेक्शियस कोई कारण तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो रूल आउट कर लेना चाहिए, लेकिन आम तौर पर ज्यादातर जो लोगों को ये दिक्कत होती है उनको आईबीएस की समस्या ही होती है।
0: तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है?
1: जी हाँ, ये काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है, और जो भी व्यक्ति से पीड़ित होते हैं उनका जीवन जो है वो एकदम नॉर्मल की तरह वो जी सकते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, गट हेल्थ के बारे में आए दिन बहुत चर्चा होती है सोशल मीडिया पर, बहुत ज्ञानवान लोग जो हैं गट हेल्थ के बारे में धड़ल्ले से जानकारी देते हैं कि ये करें वो करें, जीरा खाएं, ये करें साबुत, ये खाएं, इसको छोड़ दें, तो लोग भी परेशान है कि क्या करें क्या ना करें
1: जी।
0: गट हेल्थ के बारे में समझाइए कि ये क्या है और इसकी चर्चा इतना क्यों है इन दिनों?
1: गट हेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस समय इवॉल्व कर रहा है। इंस्टाग्राम पे जो इंस्टेंट इसका ज्ञान मिलता है उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में इस पे काम हो रहा है। गट हेल्थ का बेसिकली अगर आप समझे, हमारी गट में क्या चीज़ है जो डिफाइन करती है कि हेल्थ क्या है?
0: मतलब गट का मतलब जो हमारी आंत है,
1: आंत है,
0: अब बड़ी और छोटी
1: दोनों,
0: दोनों
1: जी। अब इसमें रोज आप देखिए ये कितनी चीजों का सामना करती है, हम खाने में ना जाने क्या क्या खाते हैं। तो एक हेल्दी गट वो होगी कि हमने कुछ खाया है तो भी वो हमें इम्पैक्ट ना कर पाए, अगर हमने कुछ खाया है तो हमारा शरीर उसको संभाल पाए। जैसे कि हमने कुछ खाया है तो हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है
0: जी,
1: वो जो खराब बैक्टीरिया है उनको रोकता है। उसके बाद छोटी आंत में, बड़ी आंत में एक गट बैरियर की जैसे मैंने चर्चा की कि किसी भी हार्मफुल चीज को हमारे ब्लड तक या हमारे सिस्टम तक नहीं पहुंचने देना है,
0: वो वहां रोक लेता है,
1: वो वहां रोक लेता है। अब खाने में कुछ ऐसी चीजें जैसे हाई फैट की हमने बात की, बहुत ज्यादा शुगर की बात की, या
0: तला हुआ जो बात की,
1: ये सब चीजें इस लाइनिंग को, इस एपिथेलियल बैरियर को, इस गट बैरियर को तोड़ देते हैं, और इसके कारण जो हार्मफुल चीजें हैं वो हमारे शरीर में चली जाती हैं। तो ये दूसरा

0: हो गई। तीसरी बात, हमारा जो वजन है उसका करीबन 1 से 2 किलोग्राम हमारी आंत के बैक्टीरिया का वजन है।
1: अच्छा
0: जी, तो जितने हम नहीं हैं उससे ज्यादा बैक्टीरिया हमारे अंदर है, करोड़ों।
1: वाह।
0: और ये बैक्टीरिया आमतौर पे बहुत सारे अच्छे काम हमारे लिए करते हैं कि किसी
1: मतलब भी, ये हमारे सैनिक हैं।
0: जी, जी जी जी। और ये जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करता है, मान लीजिए कोई खराब बैक्टीरिया, तो उसको भगाते हैं। हमारे कई विटामिन मिनरल इन बैक्टीरिया के कारण हमें मिलते हैं।
1: अच्छा
0: जी, तो इनको हम कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया, द गुड बैक्टीरिया।
1: वेरी गुड।
0: और ये बैक्टीरिया भी एक गट हेल्थ का एक किस्म का मार्कर है। अगर हमारे खाने पीने में परिवर्तन होता है, सब्जियां फल कम होते हैं, और जैसी पदार्थ मैंने बताए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तो ये बैक्टीरिया बदल जाते हैं, इनमें बहुत परिवर्तन आ जाता है,
1: स्वभाव चेंज हो जाता है।
0: जी, और जिसको हम बैड बैक्टीरिया या साइंटिफिक भाषा में डिसबायोसिस बोलते हैं, वो स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसी स्थिति में ना सिर्फ इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, बल्कि ये तक देखा गया है कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज, जैसे इवन हार्ट डिजीज, इन सब का रिस्क भी बढ़ जाता है।
1: जी, इसका मतलब डॉक्टर साहब, ये तो अपने आप में पूरे शरीर को चलाने का तंत्र है, अपने आप में फुल फ्लेज्ड ये डिपार्टमेंट है।
0: जी जी जी।
1: तो तभी गट हेल्थ की बात ज्यादा होती,
0: बहुत हो रही है।
1: तो इसको दुरुस्त रखने के लिए कुछ थोड़ी सी चीज बता दीजिए, अपनी दिनचर्या में कैसे ख्याल रखें। वो तो सब पता है कि अच्छे सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, वो है।
0: फिजिकल एक्सरसाइज, ये बहुत हेल्पफुल है, ये भी बैक्टीरिया को बदलती है। जैसे फर्मेंटेड फूड है, चाय है, कॉफी है, इनसे भी बैक्टीरिया बदलते हैं। किन चीजों से खराब होते हैं, कुछ तो हमने खाने की चीजें बता दी। अगर आपका मोटापा है तो बैक्टीरिया खराब हो सकते हैं। अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं
1: तब खराब हो सकते हैं। सही है।
0: अगर आप एसिड को दबाने वाली जो दवाइयां होती हैं, कि कुछ भी हुआ जी, एक एसिड दबाने वाली जो दवाई खा ली सुबह सुबह, वो भी बैक्टीरिया को खराब करती है।
1: अच्छे बैक्टीरिया को
0: खराब करती है। ये सारी चीजें हैं जिनसे ये हमारी जो गट हेल्थ है वो खराब हो सकती है।
1: आपने कहा कि जो हमारे अच्छे कीटाणु हैं उनको बदल देते हैं, बदलने का मतलब क्या है, क्या खराब करते हैं? या
0: देखिए, क्या होता है कि करोड़ों बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में हैं। अगर आप कोई भी इस तरह की चीज लेते हैं तो एक तो उनको मार देती है, जैसे एंटीबायोटिक्स उनकी डाइवर्सिटी को खत्म कर देती है। जो भांति भांति के वो काम कर रहे थे, जो उनके फंक्शन है फिजियोलॉजिकल, जैसे
1: अलग अलग जो काम कर रहे थे,
0: जैसे हम इम्यूनिटी भी देती हैं, हमारे विटामिंस भी बनाती हैं, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करने में भी उनका काम है, वो सारे जो काम है वो डिसरप्ट हो जाते हैं।
1: हाँ, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं।
0: और जब ये बैक्टीरिया वहां से खत्म हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो वो जगह बनी है उसमें जो खराब बैक्टीरिया अपनी जगह बना लेते हैं,
1: उनकी जगह बहुत अच्छी
0: रिप्लेस कर देते हैं।
1: बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि ये सवाल आज तय था कि डॉक्टर आएंगे और गट हेल्थ के बारे में तो पूछना है। तो गट हेल्थ वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए।
0: जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे पहले कहते थे कि सब बीमारियों का जो जन्म है,
1: जड़ है
0: वो पेट से ही निकलती
1: पेट
0: है,
1: से शुरू,
0: तो उसका जो साइंटिफिक बेसिस है वो भी अब लगभग बन रहा है कि ये जिसको गट माइक्रोबायोम या जो हमारे बैक्टीरिया या आंत में रिजाइड करते हैं उनसे उनका लिंक बन रहा है।
1: जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे आजकल खाने पीने की चीजों में ये कहा जाता है कि सुबह उठकर सूरजमुखी के, पंपकिन के, कुछ और बीज हैं, उन्हें भिगो के खाया जाए, सुबह उठकर खाया जाए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ ये पानी पिया जाए, वो किया जाए, क्या ये सब चीजें, इनका प्रभाव पड़ता है कि वाकई ये लेनी चाहिए?
0: देखिए, इसमें कोई, जो आपने सीड्स के बारे में बताया, उनको भिगो कर लें, ये कोई बुरी बात नहीं है।
1: अच्छा, ये उसको पुख्ता ही करेंगे,
0: क्योंकि वो फाइबर है, फाइबर हमारे इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइनल सेल्स के लिए अच्छा है।
1: अच्छा,
0: लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसको इतना कठिन बना दिया जाए। तो कोई भी फाइबर है वो आमतौर पर अच्छा ही काम करेगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें साफ पानी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए पहाड़ चढ़ के जाना पड़े।
1: मतलब जो भी अच्छी चीजें हैं खाने पीने की, मॉडरेट तरीके से उनको लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्योंकि समय कम है और लगभग हो भी चुका है, लेकिन आप सामने बैठे हो, दिल करता है ये भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, कुछ रह ना जाए। आप ये बताइए कि तनाव का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें तो हमारी जो आंत है, इसके कुछ फंक्शन तो मैंने बताए, इसमें दो और बड़ी बातें हैं। हमारे ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा नर्व सेल हमारी इंटेस्टाइन के अंदर है। जो हॉर्मोन्स हैं, इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा हॉर्मोन भी बनाती है। तो जो भी हमारे शरीर में चल रहा है, जैसे आपने बोला स्ट्रेस, उसका इम्पैक्ट भी इन न्यूरॉन्स और हॉर्मोन्स पे होता है,
1: आएगा आएगा।
0: और उसी कारण आप देखेंगे कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, समय होता है,

0: है हमारी इंटेस्टाइन के काम में व्यवधान पड़ जाता है, जैसे कि कई लोगों को दस्त लग जाते हैं उस समय,
1: लूज मोशन आ जाते हैं,
0: कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता
1: है। जी जी जी,
0: तो डेफिनेटली
1: भूख मिट जाती है।
0: इसको हम कहते भी हैं गट ब्रेन एक्सेस, कि इनके बीच में एक बहुत अच्छा नाता है और ये आपस में लगातार बात करते रहते हैं और जो भी ब्रेन में हो रहा है उसका गट पे असर पड़ता ही है।
1: जी अच्छा, विटामिन की टेबलेट्स का भी बहुत प्रचलन है कि विटामिन सी लीजिए या कुछ और लीजिए, उनके बारे में भी बताइए, क्या उनका लेना सही है अगर आपका आहार अच्छा है?
0: जब तक आपका आहार अच्छा है इस प्रकार की कोई भी सप्लीमेंट का कोई बहुत फायदा होता नहीं है, बल्कि कई बार अगर ये ओवरडोजिंग हो जाए तो ये संकट
1: लेने के देने पड़ जाए,
0: लेने के देने पड़ जाए।
1: तो इसलिए डॉक्टर से पूछ लिया जाए
0: कि पूछे बिना ये इस तरह
1: लेना
0: से
1: नहीं चाहिए,
0: नहीं
1: ओवर द काउंटर नहीं लेना,
0: ओवर द काउंटर तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा,
1: नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो भी हमारी गट हेल्थ के थ्रू ही होती होगी
0: जी,
1: तो उसे कैसे दुरुस्त किया जाए? तो कुछ मोटे तौर पे चीजें,
0: जो चीजें गट हेल्थ को आपकी सुदृढ़ करती हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज है, चाहे खाने पीने में जो भी मैंने बताया कि सब्जियां फल आदि, ये सारी हमारे जो जीआई इम्यून सिस्टम है या टॉलरेंस है उसको बढ़ाती हैं।
1: अगर हम इस मामले में व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे?
0: पर्सनल हाइजीन हमारी इंटेस्टाइन्स के लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। अगर हम देखें कि कुछ भी खाना है या खाने के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी, आजकल मैं देखता हूं कि ये जो नई जनरेशन है ये साथ में वो लेके चलती है सैनिटाइजर।
1: हाँ जी, सैनिटाइजर बहुत यूज करते हैं
0: जी, वो देखिए हमारे स्किन पे भी एक्चुअली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं,
1: जहां नल उपलब्ध है वहां भी वो सैनिटाइजर ही यूज करते हैं,
0: और सारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जैसे कुछ किस्म के वायरसेस होते हैं वो सैनिटाइजर नहीं मार सकता है, और बेस्ट तरीका सोप एंड वाटर है, हाथों को साफ,
1: साबुन लगाना और पानी से धोना। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत खास बात है ये जो आपने ये बताई। कुछ लोगों की शिकायत रहती है अक्सर कि मोशन क्लियर नहीं होता है, जाने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं, वो दिखाने के बाद ही पता चलता है,
0: दिखाने के बाद आमतौर पे कि हम रूल आउट करना चाहते हैं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है
1: जिसकी वजह से अवरुद्ध है
0: जी, लेकिन अगर वो यूजुअली अपना फाइबर बढ़ा दें खाने में तो आमतौर पे इसमें इम्प्रूवमेंट तो आता है।
1: फाइबर बढ़ा के देखें या पानी इनटेक बढ़ा के देखें, जैसे आजकल इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का दौर चला है, सरकार ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सबको इकट्ठा किया है, अब पीजीआई में भी योगा सेंटर चलता है, योगा के थ्रू भी कुछ उपचार होते हैं, क्या पेट को लेके भी कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आया, कुछ नई चीजें सामने आई?
0: योगा में कुछ आसन बताए गए हैं और मैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूं, जो कि कब्ज के लिए काफी काम करते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पर मौसम बदलता है तो पेट भी खराब होता है और दस्त भी लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से अपने आप को संभाला जाए डॉक्टर के पास जाने से पहले? पहले
0: इसमें देखिए दो बातें हैं कि डॉक्टर के पास कब जाना है। एक तो अगर बहुत तेज बुखार आ रहा है और पेट में जो दस्त लगे हैं उसके साथ खून आ रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
1: फिर अपनी डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए,
0: फिर अपनी डॉक्टरी नहीं करनी चाहिए। और अगर सिर्फ दस्त लगे हैं तो उसमें सबसे जो जरूरी चीज है, सबसे जरूरी और जो जान बचाने वाली चीज है, वो है ORS। ORS जो मिलता है बड़े आराम से मिल जाता है,
1: जी जी जी,
0: वो घोल बनाकर साफ पानी में अगर उसका सेवन करें तो आम तौर पे, क्योंकि ये वो बहुत सारे जो कॉजेज ऑफ डायरिया है ये अपने आप सेटल कर जाते हैं, तो हमें सिर्फ वो समय काटना है और ORS से जो हमारे अंदर पानी और नमक की कमी होती है
1: वो पूरी हो जाती है
0: और जान का खतरा नहीं बनता है। अगर एक दो दिन के बाद भी बहुत ज्यादा दस्त चल रहे हैं और ORS भी लेना मुश्किल हो रहा है कि बार बार मान लीजिए उल्टी भी शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: अच्छा एक चीज बताइए, आजकल बाजार में रेडी टू यूज ORS भी मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर में मिलते हैं,
0: उसमें देखिए ORS का एक WHO फॉर्मूला होता है,
1: जी जी जी,
0: उसके अनुसार ही चलना चाहिए। मुझे पता है कि बाजार में कुछ ऐसे प्रिपरेशन आते हैं जो ORS फॉर्मूले के अनुसार नहीं है,
1: जो मौलिकता लिए हुए है ORS वही लेना चाहिए,
0: वही लेना चाहिए
1: जी जी जी,
0: और इस
1: पे सिंपल फॉर्म में जो आता है,
0: और इस पे बहुत सारे कोर्ट के फैसले भी आए हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं।
1: नहीं, वो हम इस प्रोग्राम का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हम तो आपसे इस संबंध में जानकारी चाहते हैं मोटे मोटे।
0: ये है कि जो ORS का फॉर्मूला आपको सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से मिल जाए उससे अच्छा कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है। तो आपने डॉक्टर विशाल बहुत अच्छी जानकारी दी, विस्तार पूर्वक आपने पाचन तंत्र के बारे में और किस तरह से हमारी गट हेल्थ के बारे में, तनाव किस तरह से हमारे पे इम्पैक्ट करता है और हमें किस तरह से ख्याल रखना है अपना, तो ये आपने बताया। कि कहने का मतलब आपका ये है कि अगर आपका पेट दुरुस्त है तो सारा जहां आपका

0: जी,
1: तो जाने से पहले इस प्रोग्राम में कोई संदेश हमारे श्रोताओं के नाम देना चाहें?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमने आज चर्चा की है वो सिर्फ मानसून के लिए नहीं, हर समय के लिए वो हमारी गट हेल्थ के लिए और पेट की स्वस्थता के लिए वो लागू रहनी चाहिए।
1: यानी अच्छी आदतों का मौसम नहीं बदलता, मौसम चाहे बदलते रहे।
0: जी,
1: तो डॉक्टर विशाल शर्मा, आप इस प्रोग्राम में आए, हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और आज आपके श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी, तो श्रोताओं, आज के FM लाइफलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ रहे एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी PGI चंडीगढ़, डॉक्टर विशाल शर्मा। बरसात में पाचन तंत्र का ध्यान कैसे रखा जाए, इसके बारे में इन्होंने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रोग्राम में अपना तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता रमन भगत। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखिए। नमस्कार।
2: FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम FM लाइफलाइन, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
3: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
4: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
3: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
4: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
4: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
3: आकाशवाणी चंडीगढ़।
5: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
3: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुने हे मित्रां दे।
6: सुने हे मित्रां दे, त्वाडे दिल खिचवे सुने हे, त्वाडे दिल दा हाल ते पंजाबी गीतां दी तमाल। जी सुने हे मित्रां दे।
7: इस पंजाबी फोन इन प्रोग्राम्स द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और सुनाओ दोस्तों, की हाल चाल है? हमेशा वांग अज भी साडी वाहिगुरु अगे ही अरदास है कि तुसी चढ़दी कला च होवो। हुण इस तों पहलां कि असीं तुहाडे सुनेहे अपने सुणन वालियां तक पहुंचाइए, आकाशवाणी चंडीगढ़ दा इक सुनेहा अपने प्यारे स्रोतियां दे नाल। दोस्तों, जिद्दां पतझड़ होए बिना पेड़ ते नवे पत्ते नहीं आउंदे, उसे तरह ही जिंदगी च औकड़ां ते संघर्ष तो बिना मंजिल हासिल नहीं हुंदी। इसलिए जिंदगी दे हर पल हर कड़ी च अपने आप ते भरोसा रख के संघर्ष करो, मंजिल अपने आप तुहाडे कदम चुमेगी। हुण वारी है तुहाडे सुनेहियां दी, आओ फिर सुनिए तुहाडे सुनेहे।
3: सुनेहे मित्रां दे प्रोग्राम, तुहाडा स्वागत है जी। कौन बोल रहे हो? हैलो,

अभी आप सुन रहे थे लाइव पंजाबी फोन इन प्रोग्राम सुनेहे मित्रां दे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों शुभकामनाएं और इस कार्यक्रम में हमने उन्हीं की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: करते हो।
1: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये गीत सुना। मुख्य स्वर अभिजीत का था और फिल्म का नाम था धड़कन। आइए सुनते हैं पंकज उदास, साधना सरगम और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम मोहरा, गीतकार इंदिवर, संगीतकार विजू शाह।

कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का गीत। गीतकार थी माया गोविंद और संगीतकार थे अनु मलिक। और ये आवाजें हैं मीका सिंह और साथियों की। फिल्म का नाम है दे दनादन। इशात कामिल के बोल, प्रीतम की धुन।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया का संगीत, समीर के बोल। फिल्म का नाम है फिर हेरा फेरी और गायक स्वर हिमेश रेशमिया का।

जी, हमारे श्रोताओं ने कहा कि ये फिल्म आंधी का गीत है और इसमें संजीव कुमार और सुचित्रा सेन आपस में संवाद कर रहे थे। बिल्कुल सही लिखा आपने। और हम आपको बता दें, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी, गीतकार जो गीतकार थे गुलजार साहब थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती की आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, आज के कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डायलॉग वाले गीत से सजी हुई सुरीला सफर की संगीतमयी सफर में हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि संवाद जरूरी नहीं मुंह से बोले, मगर आपको किसी से कुछ कहना है तो सबसे पहले आंखें चेहरे के भाव बोलने से ज्यादा बहुत कुछ कह देते हैं। और आपने सही कहा, रिश्तों को जीवित रखने के लिए संवाद जरूरी है। मुझे भी कुछ कहना है, पहले आप शायद ये गीत शामिल हो सकता है। वैसे हम आपको बता दें, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं जिनमें संवाद है, लेकिन हमारे कार्यक्रम का एक समय जो है निश्चित है, तो हमने उसी अर्थ में हमने जो गाने चुने हैं, आपके गानों से हमारे गाने कितना मेल खा रहे हैं ये आप देखिएगा। लेकिन हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कई अन्य गानों का जिक्र भी किया है जिनमें संवाद हमें सुनने को मिलते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो फेसबुक खोलने से पहले अच्छा मुझे याद किया आपने और पोस्ट देखकर खुश हो गई, क्योंकि आज भगवान जी से शायद कुछ और मांगते वो भी मिल जाता। गीतों में जो बात होगी, तकरार होगी, वो तो होगी, पर आप जो कुछ बातें करेंगी, दो प्रश्न करेंगी, उनके बहुत सारे उत्तर भी देने होंगे। अरे तो आज आपने इतना हल्का क्यों मांगा, बहुत कुछ मांगना था आपको, है ना। ये कार्यक्रम तो रोज़ होता है और इस कार्यक्रम के जरिए तो आप हर वक्त हर किसी उद्घोषक से किसी न किसी रूप में जुड़े ही होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के जो गानों में थोड़ा सा अलग हमें सोच मिल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। अक्सर क्या हो रहा है कि इन दिनों झूलों और सावन पर कार्यक्रम ज़्यादा केंद्रित हमें सुनाई दे रहा है, आपने कुछ थोड़ा इसको बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से बिल्कुल साफ है कि आज के गीतों का केंद्र संवाद है, यानी ऐसे पुराने गीत जिनमें दो लोगों के बीच बातचीत, सवाल जवाब, मन की बात, शिकायत, प्यार या कोई अनकहा एहसास है। हमें कुछ गीत समझ आए, आपने भी कुछ गीतों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बीच में चल रही मीठी बातचीत है तो रूठना मनाना भी है इन गानों में, बल्कि प्यार है, गहरा करने का बहाना भी है। एक तरफ से शिकायत है, दूसरी तरफ मनुहार है, और इस तरह से जो गीत पिरोए गए हैं वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि खूब लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन बातचीत बंद नहीं करा करो, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का निदान होता है। एक श्रोता ने कहा है कि सफर में आप काफी समय बाद आई हैं। ऐसी बात तो नहीं है, हम तो सफर में आते ही रहते हैं और आप हर दिन एक ना एक सफर तो तय करती हैं ना अपनी जिंदगी का। एक श्रोता ने लिखा है कि संवाद ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी प्रकार के हल निकल सकते हैं, मन मुटाव दूर हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों को संवाद से जोड़कर जरूर रखिए। और एक श्रोता ने कहा है कि हमारे प्रांत बिहार में लोग संवाद करते हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बतरस या बतकुचन कहते हैं। बातों का सिलसिला शुरू होता है सुबह के दिनचर्या से, महंगाई से, बच्चों और घर की समस्याओं, शारीरिक तकलीफ से, उसके बाद पॉलिटिक्स पर बात चली जाती है और वहीं संवाद फिर बतकुचन पर चली जाती है। इसलिए अगर किसी को बुरा लग गया तो वो मुंह बनाकर उठकर चल भी देता है। हो सकता है दो तीन दिन बाद फिर किसी से बात नहीं करें, मिले भी नहीं, पर इस तरह जो बतकुचन होता है उसमें बहुत आनंद भी आता है। तो हम भी आपसे जब संवाद कर रहे हैं तो ये पूछना हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा संवाद रहा है जिसे आप आज तक नहीं भूल पाए। मतलब आपने किसी से कभी कोई अच्छा संवाद किया होगा, या आपको लगा होगा कि नहीं, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा किसी को गलत कह दिया है। तो क्या आपको लगता है ऐसा कोई संवाद जिसे आप नहीं भूल पाए, बस उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं। और हाँ, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कभी ऐसा कोई संवाद आपने किया हो कि आपके कुछ शब्दों ने आपके और किसी अपने के बीच की दूरी कम कर दी हो, बड़ा नहीं दी हो बल्कि कम कर दी हो। याद कीजिए वो घटना, वो शब्द, वो लम्हे जब आपको लगा होगा कि हम बहुत दूरी पर थे, लेकिन जब हमने प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपस में प्यार भरी संवाद की अदायगी की, तो हम कहीं थोड़ा करीब आ गए।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं चूर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: और हेमा मालिनी से वो ये बात कह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आप कुछ नया सब्जेक्ट लेकर ही आती हैं जो मनोरंजन भी करता है और एक संदेश भी देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद बहुत जरूरी है, लेकिन बस संवाद विवाद में नहीं बदलना चाहिए और अपनी बात कहना सही है पर सामने वाले की भी तो सुनना जरूरी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल खोए।

0: आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं और सुनते हैं अमिताभ बच्चन के साथ लता मंगेशकर जी की आवाज, फिल्म का नाम है सिलसिला, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी का संगीत। आपको बताना है, बिल्कुल सीधा साधा जवाब देना है कि पर्दे पर किस नायिका को ये बात कही जा रही है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है,

ये सोचता हूँ मैं कब से गुमसुम, कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

भीड़ है उधर भी, और हम की बातें भी भीड़ उधर भी। मेरे को बहुत कुछ मैंने किससे कहा, कुछ मैं खामोश रहे और सही हूँ। मेरे पिता ने दुनिया की हर घास में भरे दीवार जो दोनों विराज क्या थे,

0: कहानी हो सकती है और अक्सर हम उस कहानी को अपनी कहानी समझकर या अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनना पसंद भी करते हैं। क्यों, आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना? हमारे श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे गीतकारों ने ऐसे बहुत सारे गीत लिखे हैं जिनको अभिनेता अभिनेत्री द्वारा संवाद करते करते गाया गया। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संवाद रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। संवाद होना बहुत जरूरी होता है, आज के गाने भी उतने ही अच्छे लगेंगे। एक सवाल के जवाब इन्होंने कहा है श्रोता ने, जब हमने आपसे पूछा था संवाद के बारे में सवाल, आप लिखते हैं कि मुझे अपने पापा से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि आजकल वो थोड़ा भूलने लगे हैं, तो जब हम उनसे संवाद करते हैं उन्हें याद आ जाता है, नाम याद आने लगते हैं, पुरानी बातें वो याद करने लगते हैं, फिर वो किस्से सुनाने लगते हैं और डॉक्टर ने भी उनसे बहुत बात करने को कहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि यादों की बारात फिल्म का गीत आपने तारिक और जीने तमान के बीच का संवाद था वो सुनवाया। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, जब बात संवाद पर आ ही गई है तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात सिलसिला फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। अरे हमने तो आपको सुनवा भी दिया है, कहाँ है आप, सुन लिया ना आपने, जवाब दीजिएगा हमें हाँ या ना में। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज मैं अकेले ही ये प्रोग्राम सुन रही हूँ, वो भी आपकी संवाद अदायगी के साथ। मैं तो बचपन से रेडियो सुन रही हूँ जब भी समय मिलता है, मगर कुछ समय से मेरी बेटी भी सुनने लगी है, उसे आपकी आवाज पसंद है, मुझे भी, तो कहती है जब आप आए तो मुझे बताना, आज वो कॉलेज नहीं गई और मैं उसे बताऊंगी तो उसे गुस्सा आएगा। रे इतना प्यार इतना स्नेह है ना सर माथे पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद एक अद्भुत शैली है, अपने आप से बात करना भी एक प्रकार का संवाद ही तो है। मैं जब 20 साल का था तब भीतर एक बात मेरे मन में आई, उद्भव हुई कि गुलाब जामुन में सुख नहीं है, फिर अंदर ही संवाद हुआ कि सुख सबको मिल रहा है तो किधर से आ रहा है। इस तरह साबित करने का मौका कुछ महीने बाद संवाद करने का मिला। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हद से ज्यादा संवाद भी रिश्ते बिगाड़ देते हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि संवाद सदा मधुर और मीठे हो तब तो अच्छे है, वरना चुप ही सही है। वैसे जहां प्रेम और दिल मिले होते हैं वहां अधिक संवाद की आवश्यकता होती भी नहीं है, वहां मौन में भी दिल की बातें दिल से हो ही जाती हैं। एक श्रोता ने कहा संवाद हमेशा प्यार से होना चाहिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, बड़ों का सम्मान, बच्चों से प्यार। और एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे मैरिज से पहले एक बार मैं और मेरी होने वाली वाइफ घूमने गए थे। एक गार्डन में बैठकर मैंने मेरे और मेरे परिवार के बारे में उन्हें बहुत कुछ बताया। मुझे अचानक ख्याल आया कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मैंने कहा आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं, तो उन्होंने बताया कि आप ही बोले जा रहे हो, मुझे तो बोलने का आपने मौका दिया ही नहीं, तो क्या बोलूं। फिर हम दोनों बहुत हंसे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो जिंदगी में संवाद बहुत है, संवाद वही होना चाहिए जिसमें सुगंध और प्यार हो, तभी मजा आता है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं संवाद गीतों की एक अलग से लिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें अभी तक लगभग 30 गीतों के नाम शामिल हो चुके हैं। क्या बात है।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: शिव हरि का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें, फिल्म का नाम चांदनी।

जी तो सुरीला सफर कार्यक्रम में बस आज यही तक। इतना ही कहेंगे कि सहमति असहमति के बीच भी हमें हर इंसान से, हर व्यक्ति से संवाद करना बेहद जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बस इस कार्यक्रम से अब मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

किसी ने क्या खूब कहा है साथियों, हाथों से लिखे खत की तासीर ही कुछ और थी। लफ्ज उंगलियां चूमते थे और पन्ने दिल छू जाते थे। जी हाँ, खत की बात हो रही है। महज कागज का एक टुकड़ा या स्याही की चंद लकीरें नहीं है खत। ये इंसान की वो दिल की धड़कन है जो शायद शब्द रूपी पहनावा पहनकर किसी अपने को भेजा जाता रहा है। इस खत या चिट्ठी या पत्र में होता है किसी अपने के उमड़ते घुमड़ते जज्बात, जो सामने ना कह पाए वो दिल की बात है ना। खत लिखना भी कला है दोस्तों। जब दिल में ढेर सारा प्रेम हो तो शब्दों का चयन अपने आप विशेष हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा कठिन हो जाता है। तब हम एक साथी, एक दोस्त को ढूंढते हैं कि वो खाली पन्ने पर शायद हमारी भावनाएं उतार पाए। शायद ये दोस्त वो जरिया बन जाए जो दो दिलों की दूरी को पाटने का काम कर जाए, और हमारा दिल उस बाबू से मिन्नतें करता है कि मेरा हाल मेरे सांवरिया तक पहुंचा दो ना।

किसी दूसरे से खत लिखवाने में जब संतोष नहीं होता तब हम खुद लिखने बैठ जाते हैं अपने दिल की भावनाएं और पन्ने दर पन्ने भर देते हैं। फिर भी लगता है कि जो बताना चाह रहे हैं वो बात तो लिखी ही नहीं। तब उस खत के साथ कुछ चीजें भेजी जाती हैं जो शायद वो काम कर जाए जो पत्र में लिखे शब्द नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए ना। खत के भीतर रखा गया एक सूखा फूल या कोई छोटा सा हाथ से बना कार्ड या कढ़ाईदार रुमाल, ये चीजें गवाह बन जाती है कि दूर बैठा व्यक्ति आपको कितना याद कर रहा है। ये उस सुनहरे दौर की बातें हैं साथियों, जब दो प्रेम से भरे दिल आसानी से मिल नहीं पाते थे, तब ये खत उनके स्पर्श का एहसास कराता था। किसी संजीवनी बूटी का काम कर जाती थी चिट्ठी। बार बार पढ़ना, सीने से पत्र को लगाना या उसे ऐसी जगह छुपा देना जहां कोई उसे देख ना पाए कल की भूली बिसरी बातें हो गई है ना। लेकिन ये भी सच है कि खत पढ़कर सामने वाले की यादों में खो जाने का एहसास, उसके होने का कोमल अनुभव, वो आज के इमोजी या मैसेज में कहां। हाथ से लिखा खत अपनेपन, समर्पण और गहरे प्रेम का एक दस्तावेज बन जाता है, जैसे कि दिल ही साथ भेज दिया हो।

आज के इस युग में डिजिटल वर्ल्ड में अपनी बात कहना पलक झपकने जैसा हो गया है। जहां प्रेम दर्शाना मिनटों में हो सकता है, वहीं द्वेष जताना भी आसान हो गया है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चिट्ठी आना एक उत्सव की तरह होता था। घर का हर सदस्य उस चिट्ठी को बार बार पढ़ता, अपने ढंग से उसका अर्थ समझता और एक दूसरे को समझाता। खत लिखा जाता था, भेजा भी जाता था और उसे मंजिल तक पहुंचाने वाले उस खाकी वर्दी पहने, कंधे पर थैला लटकाए, साइकिल पर सवार, गली गली खत को घुमाने वाले को हम कैसे भूल सकते हैं भला, डाकिया बाबू। पूरा मोहल्ला उसका बेसब्री से इंतजार करता था, क्योंकि उसके थैले में सिर्फ कागज नहीं, किसी की तकदीर, किसी की खुशी या किसी का गम छुपा होता था। आज के समय ने भले ही उस नीले रंग के अंतरदेशीय पत्र या पोस्टकार्ड की जगह ले ली हो, वीडियो कॉल से आसानी से देखा बोला जा सकता हो, लेकिन डाकिया के उस थैले से निकलती खुशियां, आंसुओं, जज्बातों की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इंसानी रिश्तों को जोड़ने वाली मजबूत डोर है डाकिया और खत उस डोर की पतंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार है, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है, माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को, बधाई दे रहे हैं जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांति पूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है।

0: कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
1: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात प्रभावित हुआ। राजधानी में पुलिस गश्त भी बढ़ा दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। इधर झामुमो नेता मनोज पांडे ने छात्रों पर लाठीचार्ज से इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में न्यूनतम बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने भाजपा पर छात्रों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न

0: अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और अलिनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर व मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फिल्म का नाम उड़न खटोला, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहेब।

0: लता मंगेशकर और सखियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था उड़न खटोला।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र की रचना सुनिए। गायिका है आशा भोंसले और फिल्म का नाम है जागते रहो।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: और लीजिए अब सुनिए फिल्म वचन का गीत आवाज आशा भोसले की।

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है यास्मीन, आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार जानिसार अख्तर और संगीतकार सी रामचंद्र।

0: और आइए अब सुनते हैं फिल्म बारिश का दो गाना, आवाजें आशा भोंसले और चितलकर की, शब्द राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन चितलकर यानी सी रामचंद्र की है।
1: जो सीने में दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते, बोलो ना।

जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते। हरे हरे डॉज गाड़ी के इंजन की कसम।

भी हुआ है और न होगा, देखो मेरे जैसा, मानो या न मानो हमको।

0: हाय हाय हाय हाय रे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है। अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली थी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज में करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और लीजिए अब सुनिए A.R. कुरैशी का संगीत, शिवान रिजवी का गीत, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम आलम आरा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म न्यू दिल्ली का गीत, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
4: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस।

0: आवाज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: क्यों क्या कैसे कहाँ
2: बस ऐसे ही जैसे
1: भी ये जो शब्द है आप चौंक गई ना अचानक।
2: बिल्कुल एकदम तो,
1: लेकिन आपने पूछा मन में सवाल आया होगा कि अचानक ये क्यों पूछ रही है।
2: बिल्कुल इसीलिए बोल रही है ऐसा वैसा जैसा कह के।
1: तो बस होता क्या है कि ये जो सवाल है ना जो मन में सवाल पैदा होते हैं यही जिज्ञासा पैदा करते हैं। अगर हमारे मन में सवाल खत्म हो जाए तो जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। जहाँ से सृजन की यात्रा शुरू होती है तो अगर आपके मन में कौतूहल हो रहा है जिज्ञासा हो रही है तो समझ लीजिए कि आप कहीं जानकारियों का खजाना अपने भीतर पैदा करेंगे।
2: और आपका ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा ममता जी क्योंकि हमारे अंदर एकदम से लगा कि क्या पूछ ली। तो थोड़ा मजा भी आता है जब ऐसी हाँ। सखियां मिलके ऐसी मस्ती करती है तो
1: बिल्कुल
2: अच्छा।
1: और ये कहा जाता है ना जिज्ञासा जितनी ज्यादा होगी जितनी गहरी होगी सृजन की यात्रा भी उतनी ज्यादा होगी।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज का हमारा विषय भी यही है सृजन का स्रोत और जिज्ञासा।
1: बिल्कुल।
2: और सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे महिला उद्यमी ऋचा कर जिवामे की संस्थापक है इनके बारे में बात करेंगे और मुहावरों की दुनिया में घोड़े बेचकर सोना तो इसके बारे में बात किया जाएगा और हल्की फुल्की बातें में चले मेला देखने यानी कि हमारे जो साथी हैं वो घोड़े बेचकर सोना के बारे में अपने अपने अनुभव लिखें और कुछ बातें भी लिखें और मेला देखने कब गए क्या खरीदा क्या देखा वहाँ की कुछ ऐसी किस्से याद हो तो वो छोटी छोटी सी उसमें लिखे चार चार लाइनों में पांच पांच लाइनों में तो मजा आएगा।
1: वैसे तो विषय में ही शब्द छुपे पड़े हैं घोड़े बेचकर सोना घोड़ा है। जब मेला देखने जाते थे तो हाथी घोड़े मिट्टी के हाथी घोड़े होते थे ना और वो ढेर सारे खरीद के ले आते थे और उसमें शक्कर की मिठाइयां जो होती थी उसमें हाथी घोड़ा और वो अलग अलग आकृतियां बनी होती थी तो उसमें चुना जाता था कि हाथी लेंगे या घोड़ा लेंगे या हंस और चिड़िया बनी रहती थी।
2: बिल्कुल।
1: और वो दिवाली पर खासतौर से
2: दिवाली
1: प्रसाद के रूप में
2: खिलौने मिट्टी के
1: चढ़ाए जाते
2: थे खिलौने आते थे
1: और मेले में वो मिट्टी के खिलौने की खोज जरूर होती थी जब हम छोटे थे कि वो चक्री होती थी और जात छोटे छोटे चिमटे बेलन
2: रसोई का जो छोटे छोटे सामान होता था वो लकड़ी के भी बिकते थे और मिट्टी के भी बिकते थे
1: और बाद में चीनी मिट्टी के
2: और बड़े सुंदर रंग भी होते थे गुलाबी सफेद पे गुलाबी हरा ऐसे लाइन करके बड़ा।
1: आप कौन सा रंग खरीदती थी
2: जो वहाँ पे मिल जाते थे गुलाबी हरा इसलिए क्योंकि वही खरीदी
1: जाहिर सी बात है जो रंग
2: बोला है वही
1: पसंदीदा रंग होता है उसी को हम जाके चुनते थे और कई बार रंग उस रंग का न मिलने के कारण मेले में भटकते भी थे और ऐसा भी होता था मेले में जा रहे हैं तो सिर्फ खिलौने ही नहीं मिलेंगे हर चीज मिल जाती थी।
2: बिल्कुल।
1: अब तो जो मेला है वो मोबाइल पर और स्क्रीन पर होता है
2: लेकिन उन मेलों की यादें बहुत अच्छी हैं ताजी हो जाएंगी सबके आज जब बातें करेंगे है ना।
1: और मेले में और भी तो कुछ होता था वो तो हिंडोला झूला होता था
2: तरह तरह के झूले होते थे तो उसका भी एक अलग मजा आता
1: और मेले में एक डर भी होता था अपने बड़ों का हाथ छूट जाने का माता
2: जाने का फिर जब अनाउंसमेंट होता था तो फिर ढूंढाई कौन का ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हादसे हुए हैं लेकिन फिर भी मेला जाना तो
1: एक मिनट के लिए भी अगर हाथ छूट जाए तो बस डर का ज्वार मन में आ जाता था कि अरे माँ कहाँ गई अभी हम कहीं खो ना जाए गुम ना जाए भीड़ में। तो मेले का एक अलग अनुभव होता है सबके भीतर एक मेला होता है उन मेले का अनुभव होता है तो उन अनुभवों को हमारे श्रोता साझा करें और कोई एक छोटी सी घटना याद हो तो लिखें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और घोड़े बेचकर सोना ये मुहावरा है मुहावरे बहुत सारे हैं दिन भर चले अढ़ाई कोस या फिर ऐसे बहुत सारे मुहावरे
2: जो नावे आंगन टेढ़ा हाँ, बहुत सारे हैं तो
1: और बड़े बुजुर्ग हमें याद है कि दादी नानी मुहावरों में लोकोक्तियों में बात किया करते थे लेकिन अब ये समय जैसे खत्म हो रहा है तो इन्हें जिंदा रखने के लिए कभी चर्चा तो करनी चाहिए। तो किन्हें कितने मुहावरे याद हैं लिख भेजे हमें
2: क्या
1: और अब हम क्या करें बताइए
2: हम तो गीत सुनते हैं
1: चलिए

0: मंजरी जी, देखिए अपने पास विविध भारती के फेसबुक पेज पर श्रोताओं की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि मैं बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली सुन रही हूँ। क्या बात है, अभी यहाँ सुबह का टाइम 11:33 है, हल्की सी ठंड है, दिन में थोड़ा गर्म हो जाएगा।
1: क्या बात है, आप इतनी दूर से सुन रही, तो मेरा हम दोनों की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार
0: और शुक्रिया सुन रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब इतनी दूर तक विविध भारती की आवाज गूंजती है।
1: सही बात है,
0: और जिज्ञासाएं भी बहुत सारी पैदा होती हैं जब हम कहीं दूर होते हैं, तो और जिज्ञासा का घर होता है।
1: और जिज्ञासा में उन्होंने देखिए, हम लोग सोच ही सकते थे कि बर्लिन में क्या क्या मौसम है, कैसा मौसम है, तो उन्होंने बता ही दिया, तो हमारी जिज्ञासा जो थी उठी थी, वो शांत हो गई।
0: बिल्कुल सही बात है। और अब तो जिज्ञासा शांत करने का बहुत बड़ा अपने पास औजार है, वो है गूगल मास्टर। जैसे मन में कोई कौतूहल होता है, तुरंत गूगल पर जाकर लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। लेकिन एक समय था जब आपके भीतर कोई जिज्ञासा है तो उसको शांत करने के लिए बड़ों की शरण में जाना पड़ता था, टीचर्स की शरण में जाना पड़ता था।
1: और साथ साथ हम लोग किताबों में भी पढ़ा करते थे, ढूंढ के पढ़ते थे कि इसमें क्या है, किसके बारे में क्या लिखा गया है। तो किताबों को पढ़ने का एक अलग ही,
0: और किताबें पलटते हुए हम जब एक दो पन्ने पलटते तो उसमें और भी चार जानकारियां मिल जाती थी।
1: बिल्कुल। और जब हम अपने आसपास की चीजों और वस्तुओं, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों और लोगों को देखते हैं ना ममता जी, तो कभी कभी लगता है कि उनका आकार कैसा है, रंग रूप, बोली भाषा और छोटी बड़ी सभी वस्तुओं के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है, कैसी है, कैसे बनी है, कब बनी है, किसने बनाया और कहाँ से आई, क्यों, जैसे सवाल मन में उठते हैं तब जिज्ञासा का जन्म होता है। जिज्ञासा होने से ही सृजन के स्रोत का जन्म होता है, जैसे आपने शुरू में पूछा ही था कि क्यों कब, तो वही चीज है।
0: और ये जो सृजन का जन्म होता है तो जिज्ञासा से, तो इस जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी है, खास तौर से बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। और एक जिज्ञासा मेरे मन में भी उठी है कि इस समय 3:15 होने को है, तो क्या किया जाए,
1: अंतराल लिया जाए,
0: लेते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात जिज्ञासा की चल रही थी। मंजरी जी, जब जिज्ञासा की बात हम कहते हैं तो छोटे बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और कई बार माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उन्हें शांत नहीं करते बल्कि इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं, कई बार डांट देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं की गई तो फिर आगे चलकर वो पूछना ही बंद कर देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे बच्चे पूछते भी ना कि मम्मी देखिए आसमान में चांद क्यों निकला है, रात में क्यों निकलता है, तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, इस तरह के बच्चे बातें पूछते हैं, और सूरज इतना गर्म क्यों होता है। तो अगर आप उन बच्चों को सही से जवाब देंगे तो वो उनको बहुत समय तक याद रहेंगे और उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो भी उस समय उनको उत्तर जब मिल जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। तो कहना चाहिए जिज्ञासा हर किसी में होनी चाहिए किसी भी विषय को जानने की, और अगर वो प्रश्न करते हैं किसी सामने वाले से तो उसको भी सही जवाब देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे श्रोता बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सृजन का स्रोत जिज्ञासा। ये सत्य है कि कुछ नया रचने जानने या आविष्कार करने की प्रेरणा हमेशा मन की उत्कंठा या सवाल पूछने की आदत से ही पैदा होती है। जब तक मन में ये क्या है, ये काम कैसे करता है जैसे भाव नहीं उठते, तब तक किसी नए विचार या कला का जन्म संभव नहीं है। जिज्ञासा और सृजन का संबंध मन में उठने वाला एक छोटा सा प्रश्न नए रास्ते खोलता है। जिज्ञासा इंसान को उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल। और ममता जी, इसी तरह एक साथी हमारे लिखते हैं कि जिज्ञासा ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब मन में किसी बात को जानने और कुछ नया खोजने की चाह जागती है तभी नए विचार जन्म लेते हैं। जब मन में सवाल आते हैं तो दिमाग जवाब ढूंढने लगता है, यहीं से सृजन की शुरुआत होती है। कुछ नया रचा जाता है, फिर वह कविता का रूप हो चाहे विज्ञान के रूप में आता है। जिज्ञासा ही नई कल्पनाओं को जन्म देता है और वही का रूप लेकर हमारे सामने आती है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि जिज्ञासा जन्मजात गुण है, हर इंसान के भीतर होता है। यह न केवल ज्ञान के बंद दरवाजों को खोलने वाली पहली चाबी है बल्कि जीवन को रोमांच, नए अनुभवों और अंतहीन संभावनाओं से भरने का एकमात्र जरिया भी है। और आगे इन्होंने लिखा है कि विविध भारती से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिज्ञासा इसीलिए ही हमें बहुत पसंद है।
1: क्या बात है, इतनी बढ़िया से उन्होंने तारीफ करी है। और जिज्ञासा सृजन का मूल स्रोत है, लिखते हैं हमारे साथी। और सुरीली धड़कन विविध भारती पर भी जिज्ञासा से भरी सृजन रूपी गंगा बहती रहती है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कुछ ना कुछ नया जानने की, खोजने की और खोज के बाद उसका सृजन करने की इच्छा जागती रहती है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी विज्ञान, कला, साहित्य और आविष्कारों की शुरुआत होती है।
0: अभी गाना सुन लेते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में हम बातें करते हैं शिक्षा की, सेहत की, खेलकूद की और महिला उद्यमी की, और कई बार रसोई की भी बातें करते हैं। गांव से शहर तक, शहर से महानगर तक, महानगर से विदेशों तक भी हमारी आवाज गूंजती है।
1: बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह की बातें होती है ना, तो जो हमारी महिलाएं जो निराशा की उसमें चली जाती है, तो वो ये सुन करके बहुत उत्साहित होती कि उन्हें हमारी बातों से उन्हें कुछ ना कुछ नया करने की एक सीख मिली है,
0: हौसला अफजाई भी करती है सखी सहेली, है ना। तो अब हम अगले विषय पर पहुंचते हैं और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाते हैं कि देखते हैं कि हमारी सखियों ने और हमारे सखाओं ने क्या लिखा है, क्योंकि सखियों के साथ साथ सखा भी हमारे ये कार्यक्रम सुनते हैं,
1: बहुत रोचक तरीके से सुनते हैं हमारे सखा
0: जी। तो हमारे एक सखा की टिप्पणी आई है जिन्होंने लिखा है कि भाई सखी सहेली कार्यक्रम हमें बहुत पसंद है और मेले के बारे में अपने जज्बात साझा किए हैं। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि मेले को आज भी मनोरंजन का विशुद्ध साधन माना जाता है। बचपन में पापा की उंगली थामकर न जाने कितने मेले देखे और जरा जरा सी चीजें खरीद कर जो मन को तसल्ली मिलती थी। मेले में देहाती फनकारों के हुनर काबिलियत की पेशकश देखना एक अलग ही आनंद देता था। पहली बार कठपुतली का नृत्य मैंने मेले में ही देखा था। मनोरंजन का ये खेल तमाशा दुनिया के किसी भी मेले में आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। बचपन छूटने के साथ ही मेला देखने जाने का उत्साह भी पीछे छूट गया, मगर मेरे शहर में पुरानी संग्रहालय की चीजों का

0: और पुस्तक मेला समय समय पर लगता रहता है।
1: बिल्कुल, मेले की बात ही कुछ और होती है क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, खाने पीने से लेकर के घर गृहस्थी के सामान हैं और बहुत सारी हस्तकला भी जो होती है वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो वहाँ से उसी हिसाब से खरीद के लाता है, चाहे वो रसोई से जुड़ा हुआ सामान और कपड़े भी बहुत होते हैं, चटाइयाँ दरी हैं, तरह तरह के कपड़े वो भी वहाँ बने बनाए मिलते हैं मेलों में। तो सब लोग बहुत शौक से मेला देखते हैं और खरीदते हैं
0: और मेले में जगहों के बारे में भी पूछते हैं। अब हमारे कुछ श्रोता जिज्ञासा की ओर फिर पहुंच गए हैं जो हमने सब्जेक्ट दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा 7 साल का पोता है, मुझसे बड़े सवाल पूछते रहता है, मुझे पता होता है तो बता देती हूँ, पता नहीं होता तो तुरंत गूगल में सर्च करके बताती हूँ। इससे मेरे पोते की जिज्ञासा तो शांत हो जाती है लेकिन मेरा भी सामान्य ज्ञान बढ़ता रहता है।
1: बिल्कुल, और इसी तरह एक लिखते हैं कि जिज्ञासा हर प्रकार के सृजन आविष्कार और ज्ञान की मूल आंतरिक प्रेरणा है। जब मन में क्यों, क्या और कैसे जैसे प्रश्न उठते हैं तभी किसी नए विचार, विज्ञान या कला का मार्ग खुलता है।
0: और अब एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: मंजरी जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेने का समय है, तो लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और मंजरी जी, इसमें कितनी सारी बातें होती हैं सखी सहेली में, शिक्षा की बातें, खेल की बातें और महिला उद्यमी की बातें करते हैं। अब देखिए ना, आज हमने विषय मेला भी दिया है, तो मेले की कितनी सारी टिप्पणियां श्रोताओं की आई है। हमारे कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि हम मेले में जाते थे, गुम हो जाते थे। कुछ श्रोता लिख रहे हैं कि मेले का इंतजार रहता था साल भर, और गाँव में जब मेला लगता था तो बाकायदा ऐलान किया जाता था कि मेला लगने वाला है, तो वहां से खिलौने खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, किताबें, और अब तो किताबों का भी मेला लगता है।
1: और मेले में ममता जी, वहां पर गुड़ के सेव हैं, चक्की है, लड्डू है, लैया के लड्डू, खील के लड्डू, ये सब भी बहुत बिका करते थे। और आइसक्रीम खाने का चाट के ठेले लगते थे, तो उसका भी एक अलग मजा आता था। और मिट्टी के बर्तन, लकड़ी के खिलौने, श्रृंगार के कितने सारे सामान होते थे, चूड़ी बिंदी। और मुझे याद है कि वो जो बड़े बड़े रिबन हुआ करते थे, वो उस समय भी खरीद के लाते थे।
0: और एक चीज की हिंडोला होता था, और बड़े वाले हिंडोले पर बैठने पर डर बहुत लगता था
1: जी।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मैं सिर्फ एक बार ही मेला गई थी मेरे दोस्तों के साथ, करीब 4 साल पहले दशहरे के मेले में। वहां से मैंने एक लकड़ी की हेयर स्टिक ली थी, जो अभी भी मेरे पास है। और वहां मैंने एक छोटे बच्चों का टी शर्ट देखा था, जिसके लिए मैंने बहुत जिद की थी, पर मुझे मेरे दोस्तों ने नहीं लेने दिया।
1: और देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेले की बात कर अपनी बचपन की बहुत यादें सामने से गुजरी हुई दिखाई दी। हमारे जमाने में मेला देखने जाना ऐसा होता था कि कहीं कोई दूसरी ही दुनिया में घूमने जा रहा है। मैं अपने चाचा जी के पास रहती थी, तो वहां मेला लगता था मेरे घर के सामने ही, रोज ही देखती थी। और दशहरा का मेला तो देखने हम सब भाई बहन चाचा जी के साथ देखने जाते थे। वाकई में मेले से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बाइस्कोप होता था, वो घिसी हुई आइसक्रीम होती थी, है ना, जो बर्फ का गोला, जिसे
0: बर्फ का गोला, और उसमें रंगीन मांगते थे कि ऑरेंज नारंगी कलर का दो, और कोई काले, काला खट्टा, काला वाला लेते थे, और वो पूरे ओठ रंग जाते थे तो उसमें फिर उस समय तो मोबाइल था नहीं कि तस्वीर खींची जाए, पर किसी गांव में किसी के पास कैमरा हुआ करता था बड़ा वाला, तो कैमरा ले आके उसके पास जाते थे कि उस कैमरे से फोटो ले ली जाए, फिर वो फोटो प्रिंट करवा के मिलती थी बहुत मिन्नत करने पर।
1: बिल्कुल, कई कई मेलों में होता भी था ममता जी, पर्दे लगा करके, वो चांद तारा है, और क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल रखी है, उस पर फोटो खींचने के लिए सुविधा बनी रहती थी। तो हम लोग ने भी बहुत इस तरह से कि ऐसे चांद है उसके ऊपर बैठ के फोटो खींचा रहे, जैसे लग रहा है हम आसमान की सैर कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठ रहे हैं कि अरे वाह हम तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो इस तरह की फोटो जब देखते हैं वापस एल्बम में, तो मेले की यादें ताजा हो जाती है। और मेले में जो एक आता था गुलाबी कलर का पैकेट में बंद होता था, बुढ़िया के बाल जिसे कहते हैं, वो भी हम लोग खरीदते थे, क्योंकि उससे ओठ और जवान लाल हो जाती थी, तो बड़ा मजा आता था। तो मेले में कहना चाहिए कि सब चीजें, और वहां पे डांस वगैरह भी होते थे पशुओं के, तोता को दिखाया जा रहा, चढ़ रहा, उतर रहा है, पर्ची निकाल रहा,
0: कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता था, वो बहुत आनंद आता था। और जो लोक नृत्य दिखाए जाते थे उसकी तो छटा अलग ही होती थी। एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया और मोबाइल ने हम लोगों को कुछ इस कदर मोह पाश में बांधा है कि देर रात तक हम अपने सुख चैन और आंखों को मोबाइल के हवाले कर देते हैं, फिर लेट नाइट घोड़े बेचकर ऐसे सोते हैं कि सीधे दोपहर ही जागते हैं, और मोबाइल की लत ने हमें घूमना फिरना मेलों ठेलों का मोह भंग कर दिया है। दशहरा मेला हो, चाहे नवरात्रि का मेला हो, व्यापार मेला हो, कोई सांस्कृतिक मेला, बच्चों को कहो कि चलो भाई सब चलो, कुछ बाहर की रौनक देख कर आते हैं। इस पर बच्चे कहते हैं भला भीड़ भाड़ में धक्के खाने कौन बाहर जाएगा, हम घर पर ही रहकर ये सब कुछ मोबाइल के जरिए रील में देख लेंगे। मगर मोबाइल और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग के चलते गांव देहातों में मेलों का क्रेज आज भी बरकरार है। मेले हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल है, और इसे जीवित रखने के लिए समय समय पर मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए
1: जी। और एक लिखते हैं ममता जी कि मेले तो बहुत गए हैं, बचपन में पानी वाली बॉल अक्सर लाते थे, और बहन के लिए मिट्टी के घंटी और चूल्हा, हांडी, तवा, बेलन, चकला वगैरह लाते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे ये डिजाइन। और एक लिखते हैं पहले मेले मंदिर के चौगान में लगते थे, जो दर्शनार्थी दर्शन करते और कुछ आनंद लुटाते थे, अब मेले बड़े शहर में लगने लगे हैं, गाँव में बंद हो गए हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत हमने मेले के बारे में लिखा है कि मेला देखने आज मैं चाहती हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करने कर रही हूँ। जब मैं बचपन में मेला देखने जाती थी तो मुझे खिलौने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता था। मेला देखेंगे, ये खिलौना मिलेगा, वो खिलौना खरीदेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और इस चक्कर में मैं तो जाती खिलौने देखने और खाने। कितनी बार मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता कि ये बहुत ज़्यादा खिलौने की ज़िद कर रही है, और वहीं पर मेले में इस बात को लेकर मेरे पेरेंट्स का झगड़ा हो जाता। मेरे खिलौने की ज़िद को लेकर ये मेरा बचपन का सबसे ज़्यादा अनुभव रहा है मेला देखने का। वैसे मेरा मेला देखने का मज़ा अलग ही होता है। वहाँ जाकर खिलौने खरीदना, अब चूड़ियाँ खरीदना, खाना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब तो मेले में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, मतलब खाने के अलग अलग स्टॉल भी होते हैं और चीज़ें तो अभी मिलती हैं। अभी भी मेले लगते हैं, अभी मुंबई जैसे महानगर में भी मेला लगता है जहाँ पर पूरे देश की लोग आते हैं और चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। बहुत सारी लोक संस्कृति की चीज़ें होती हैं, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के बर्तन और तरह तरह के अचार भी मेले में मिलते हैं।
1: अचार है, चूरन है, चिप्स, पापड़, कचरी, ये सब भी बहुत मिलता है। और जो बहुत सारी चीज़ें बर्तने कटर वगैरह जैसे आ गए हैं मार्केट में, तो वो सब भी मिलते हैं, और तरह तरह की जैसे आपने चूड़ियाँ।
0: लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो मेले में भीड़ होती है वो बड़ों की भीड़ होती है, ज़्यादातर उम्र दराज लोगों की, बच्चों की भीड़ नहीं होती है।
1: बच्चों की भीड़ तो उन मेलों में हुआ करती थी जहाँ झूले वगैरह होते,
0: क्योंकि अब जो हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि मोबाइल में सब कुछ है, तो सब बच्चों को अगर कहा जाए कि चलो घूम के आते हैं, दशहरे का मेला देखाते हैं, दुर्गा पूजा देखाते हैं, तो बच्चों की यही बात होती है कि इतनी देर हम पढ़ाई कर लेंगे, और पढ़ाई तो क्या, जब माता पिता घर में नहीं रहते तो पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट स्क्रीन के सामने भी होता है।
1: और हमारे साथी एक लिखते हैं ममता जी इसी पर कि वैसे तो मैं शुरू से शहर में ही रही हूँ, तो दशहरे में जो मूर्ति बिठाई जाती थी वही मेले जैसा भी लगता था, हम लोग भी वहीं जाते थे। दशहरा के चार दिन यानी सप्तमी से दशमी तक मम्मी घूमने जाने से 20 रुपए देती थी, उससे ही हम लोग झूला भी झूलते थे, चाट वगैरह भी खाते थे और कुछ खरीद भी लेते थे। अभी भी डिज्नीलैंड में जाती हूँ तो मुझे हर एक माल 10 रुपए या 20 रुपए वाला सामान खरीदने में ज्यादा मजा आता है। वहां मैं बड़े सामान कुछ भी नहीं खरीदती हूँ। और एक लिखते कि मेला हमेशा गर्मी की छुट्टियों में ही लगता है। मैं मेरे दोनों छोटे नातियों को लेकर मेले गई, बड़े बच्चे तो बड़े झूलों में बैठे थे, लेकिन छोटे झूलों में दोनों नातिनियों ने को लेकर मैं खड़ी थी, अचानक से धूल भरी आंधी चालू हुई, लगभग सभी झूले रोक दिए गए, शॉर्ट सर्किट भी होने लगा, जल्दी जल्दी सब बाहर निकलने लगे। उस समय बहुत घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि दो छोटे मेरे पास थे और बाकी सारा दूसरा ग्रुप अलग था। फिर कुछ देर सब में सब लोग मिल गए, बाहर आए तब तेज बारिश भी होने लगी थी। कई बार हो जाता है ऐसा, मौसम बदल जाता है अचानक, तो पता नहीं चलता है कि हम तो मेला घूमने गए लेकिन इस तरह की समस्याएं हो जाती। तो ऐसे ही कहा जाता है कि अपने बच्चों का बहुत आप ध्यान रखें जब भी कहीं जाएं।
0: तो अब बातचीत को थोड़ी देर के लिए दे रहे हैं विराम और सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। कई बार यादों का भी मेला होता है, तो यादों का मेला बहुत विशाल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। देखते हैं इस गाने में क्या बात है।

0: वेलकम टू ममता जी. आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत महिला उद्यमी रिचा कर के बारे में, जो जीवामे कंपनी की संस्थापक है. और अक्सर क्या होता है, जब महिलाएं शॉपिंग पर जाती हैं तो अपने आंतरिक वस्त्रों के लिए एक खरीदने में उन्हें एक शर्म सी और झिझक सी महसूस होती है. ये कैसे उनके बारे में हम बताएं, क्योंकि ज़्यादातर पुरुष ही ग्राहक को कपड़ा दिखाते हैं. तो इस समस्या पर जो ध्यान था ना वो इन रिचा जो कर थी उनका गया, और उन्होंने इस बारे में सोचा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए. तो उन्होंने रिचा कर जो थी वो जीवामे कंपनी की संस्थापक और पूर्व सीईओ है. जीवामे ब्रांड ऑनलाइन लग्जरी अंडरगारमेंट्स की कंपनी है. तो उनका इस पर ध्यान गया और उन्होंने इस तरह से कंपनी को आगे बढ़ाया.
1: और रिचा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं. रिचा कर का जन्म हुआ था जुलाई 1980 को झारखंड के जमशेदपुर के एक रूढ़िवादी मध्यम वर्गीय परिवार में. उनके पिता टाटा स्टील में काम करते थे और परिवार में आदर्श मूल्य संस्कार और सामाजिक रीति रिवाजों को मान्यता दी जाती थी. ऐसे परिवार में रिचा कर ने आगे चलकर अलग ही व्यवसाय को चुना, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था. रिचा के सपने इन सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़े थे.
0: और उन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. उस समय ये किसी लड़की के लिए आसान नहीं था. साल 2007 में उन्होंने मुंबई के नरसिंह मौजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में से वहाँ से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया और बाद में मास्टर्स डिग्री भी पूरी की. वे शुरू से कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी, और पढ़ाई पूरी करने के बाद रिचा ने आईटी क्षेत्र में कदम रखा और रिटेल कंसल्टेंसी जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में काम किया. इस दौरान उन्होंने रिटेल और मार्केटिंग की गहरी समझ हासिल की, जो उनके बिजनेस में काफ़ी काम आई. और रिचा जब एक संस्थान में काम कर रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि बाजार में आज भी महिलाएं इस तरह के वस्त्रों को लेने में असहज और संकोच महसूस करती हैं. दुकानों में चैन के विकल्प कम और प्राइवेसी भी नहीं लगती. साथ ही में सही साइज नहीं मिलना एक बड़ी आम समस्या हो गई थी. बस यहीं से इस कंपनी को आगे बढ़ाने का उनका ध्यान गया.
1: और 2011 में रिचा ने अपने पति और सह संस्थापक विवेक कर के साथ मिलकर जीवामे की शुरुआत की. ये भारत का पहला ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड था, जिसका उद्देश्य था महिलाओं को स्टाइलिश, आरामदायक और किफायती लॉन्जरी उपलब्ध कराना, वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ.
0: जी, और शुरुआती दौर में फंडिंग जुटाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अपनी बचत और उधार लेकर इस सपने को हकीकत में बदला उन्होंने. और जो इसको इस खरीदारी को मतलब इस आंतरिक वस्तुओं की खरीदारी को उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन पर ला करके बहुत ही सुविधाजनक बनाया, और बल्कि इसे एक सशक्त अनुभव में बदल दिया. ग्राहकों का भरोसा जीतने के साथ जीवामे जल्द ही भारत का विक्टोरिया

0: सीक्रेट बन गया। साल 2014 में फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 की लिस्ट में शामिल किया गया और कंपनी की ऊंची उड़ान को देखते हुए साल 2015 में उद्योगपतियों ने भी इसमें निवेश किया, जिससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई।
1: और जब किसी और कंपनी ने टेक ओवर किया तो रिचा ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अभी भी शामिल है। आज जिवामे की वैल्यूएशन 16,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो चुकी है और ये ब्रांड लाखों भारतीय महिलाओं के लिए आत्मविश्वास और सहजता का प्रतीक बन गया है। रिचा कर की जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने वही सच होते हैं जिनका पीछा करने की हिम्मत हो। चाहे आप किसी छोटे शहर से हों, रूढ़िवादी परिवार से क्यों ना हो, या समाज आपको पीछे खींचे, अगर आपके पास जुनून है, मेहनत है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
0: जी,
1: अब इसके बाद एक गाना सुनते हैं।

0: कैसे भीगे भीगे प्यारे प्यारे हैं नज़ारे, और बारिश के मौसम में नज़ारे का आनंद कुछ अलग ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: और इस बारिश के मौसम में नींद भी खूब जम के आती है, और तेज बारिश हो रही हो तो ऐसे लगता है कि जम के सो जाया जाए, है ना?
1: बिल्कुल, घोड़े बेच कर सो जाए।
0: और आज हमने विषय भी दिया है अपने श्रोताओं को कि मुहावरों की जो दुनिया पहले होती थी बड़ी आबाद रहती थी, मुहावरों में बात करने का एक अलग ही जायका होता है, मिजाज होता है, लेकिन अब ये तरीका बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। लोग अगर मुहावरा बोलना भी चाहें तो सामने वाला समझता ही नहीं। आप आने वाली पीढ़ी के सामने मुहावरे का प्रयोग करके देखिए,
1: वो सिर्फ कोर्स में ही पढ़ के समझते हैं। हम लोग तो अपने घर में दादी नानी जो थी, मम्मी वगैरह, ये सब हर बात में कहावते मुहावरे बोलती थी। कुछ नहीं काम आ रहा है तो कह रहे हैं नाचना आंगन टेढ़ा।
0: बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि घोड़े बेचकर सोने वाले मुहावरे से मुझे एक घटना याद

0: कलकत्ता गई। मेरी भतीजी की शादी थी, बुआ होने के नाते मेरे ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां थी। दो तीन दिन के भागदौड़ के बाद जब बारात की विदाई हो गई तो जहां जगह मिला वहां सो गई। इत्तेफाक से उस दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, उसे जन्मदिन सेलिब्रेट करना था, पर मैं तो घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने मुझे इस तरह से कभी सोते नहीं देखा था तो घबरा कर रोने लगा। तब उसके पापा ने उसे समझाया और मुझे जगाया। फिर किसी तरह से केक कटवाकर हम सबको बाय बोलकर फिर से घोड़े बेचकर मैं तो सो गई।
1: क्या बात है, कितनी अच्छी सी यादें हैं।
0: वैसे ये घोड़े बेचकर नींद आजकल आ जाए तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ा खुश नसीब कोई है नहीं।
1: बिल्कुल, जिसको गहरी नींद आती
0: हो, गहरी नींद और देर तक आती हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अब जो जमाना है, जो सोशल मीडिया, मोबाइल स्क्रीन और व्यस्तता और सबकी दोहरी तहरी जिम्मेदारियों ने नींद हनन कर ली है। और
1: जहाँ बगल में मोबाइल रखा रहता है, जरा सी मैसेज आई नहीं कि पट से देखने लग गए, तो ये चीज बहुत गड़बड़ हो गई नींद हमारी। तो हमारे साथ ही लिखते हैं, घोड़े बेचकर सोना हिंदी का बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय मुहावरा है, जिसे रोज मजाक की बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगर बहुत उठाने पर भी नींद से कोई नहीं उठता है तो कहा जाता है कि घोड़े बेचकर सो रहे थे। लोग बोलते हैं कि बेटी का ब्याह कर लिया, अब तो हमको घोड़े बेचकर सोना है। इसका मतलब निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना या सारी चिंताओं को छोड़कर बेफिक्र हो जाना। मुहावरे का अर्थ और प्रयोग ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी तरह के तनाव या डर के बिना आराम से सोता है, बहुत लापरवाही होने पर भी इसका प्रयोग होता है। इस अर्थ में भी होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर होकर सो रहा है। कई बार कहते हैं कि भाई तुम इतना सो रहे हो घोड़े बेचकर, क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई पूरी कर ली है क्या, इस तरह से भी कहा जाता है। और ममता जी हमारे और साथी लिखते हैं कि घोड़े बेचकर मुहावरे का अर्थ निश्चिंत और बेफिक्री गहरी नींद लेना होता है। पुराने समय में घोड़े के व्यापारी को घोड़े की देखभाल के लिए रात भर जागना पड़ता था। जब घोड़ा बेचा जाता था तब निश्चिंत होकर चैन की नींद ले सकते थे। तो इस तरह की बातें हमारे साथियों ने लिखी हैं। और एक लिखते हैं, मुहावरे की दुनिया घोड़े बेचकर सोना, अभी सखी सहेली शुरू होने से पहले वो घोड़े बेचकर ही सो रही थी, और इस मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोना। और ये मुहावरा हम सबके जीवन में लगभग, मैं कहूँगी कि रोज ही प्रयोग होता है। और कवि का और कहते हैं कि हम घोड़े बेचकर रविवार के दिन सो जाते हैं, उस घोड़े के उसके कारण से हमारे रोजमर्रा के कामों में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। ऐसा अनुभव मेरा तो कितनी बार रहा है, कितनी बार घोड़े बेचकर ऐसे सो गए कि मुझे सुबह उठकर काफ़ी भागीदारी, मतलब दौड़ भाग लगानी पड़ी काम करने के लिए। और ये कहती कि भाई भागा दौड़ी में दिन भी बीत जाता है इस तरह से।
0: दरअसल घोड़े बेचकर सोने का जो मुहावरा प्रचलित हुआ कि पहले के जमाने में घोड़ा घर पे होता था, मतलब आंगन द्वार पर घोड़ा बंधा होता था, और उसके पीछे बहुत सारी लागत लगती थी, क्योंकि जिसके द्वार पर घोड़ा होता था वो कहा जाता था बहुत समृद्ध इंसान है, और उसके पीछे जो खान पान होता था वो बहुत कुछ लगता था, लागत लगती थी, तो बेचने पर पैसे बहुत मिलते थे, वो इंसान समृद्ध हो जाता था। तो एक बार जब पैसे से समृद्ध हो इंसान को नींद अच्छी आए, तो ये मुहावरा उस समय बना था। और इस मुहावरे का प्रयोग कई बार नकारात्मक भी हो जाता है, इम्तिहान के दिन जब होते हैं, परीक्षा की घड़ी होती है, तो पढ़ते पढ़ते कई बार रात हो जाती है, सुबह के 4 बज जाते हैं, और पता चला कि बस एक झपकी ले लेते हैं और उठ के तैयार होके परीक्षा देने जाना है, तो पता चला कि आप सोते ही रह गए। वहां घोड़ा बेचकर सोने वाली बात तो है नहीं, लेकिन नींद ऐसी आई कि आपकी परीक्षा को देर हो गई। कई घटनाएं ऐसी भी घटित हुई कि लोग परीक्षा के पहले सोते ही रह गए, और या नींद तब खुली जब परीक्षा का टाइम हो गया, तो भागते भागते आप परीक्षा हॉल तक पहुंच रहे हैं।
1: कई बार ऐसी चीजें हो भी जाती
0: है, ऐसी नींद भी होती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि कुछ लोग तो सचमुच नींद में ऐसे सोते हैं कि लगता है अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक परिवार के साथ सुबह के टाइम में हम लोग चले गए, और मंदिर चले गए, और घर में बहू और उसकी बच्ची थी। मंदिर से लौटते हमें 10 बज गया। जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो बहू को सुना ही नहीं दे रहा था। आधा मोहल्ले के लोग जुट गए और बहू दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। बड़ा डर लग रहा था। अंत में दूसरे के घर में जाकर बांस की सीढ़ी लगाकर खिड़की पर डंडे से पीटा गया, तो बहू की बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो बहू बोली कि सो गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से उन लोगों ने, उनके परिवार ने बहू को पर कभी, मतलब बहू को घर पर कभी नहीं छोड़ा कि ये जब जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो फिर से सो जाए।
0: और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि भाई सो गए फिर क्या, देह पर मक्खी बैठे, मच्छरों ने अटैक किया, क्या अंतर पड़ता है। अब सोए तो सोए, लेकिन ध्यान रहे कि सोए

0: नहीं अपितु घोड़े भी बेचकर सोए हुए हैं, यानी पूरी तरह से गंभीर निद्रा में सो रहे हैं। जबकि निद्रा के संबंध में कहा गया है कि ये निद्रा श्वान की भांति होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए, और हम लोग इस जग पाठशाला के एक विद्यार्थी ही तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुहावरा है और इसके निहितार्थ यही है कि निद्रा तो एक बहाना है, सच तो समस्याओं से बचते रहने का एक उपाय मात्र ही है। दरअसल कई बार इसमें लापरवाही भी छिपी होती है, और अब आगे की जो जनरेशन है कई बार इसी तरह की नींद सोती है कि आप जगाते रहो उठना ही नहीं।
1: उनकी भी देखिए, वो लोग देर रात तक सोशल मीडिया मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते रहेंगे, नहीं तो कुछ सर्च ही कर रहे हैं, नहीं तो लेट नाइट पढ़ ही रहे हैं, तो उससे क्या होता है फिर वो सुबह मतलब पता चला वो 3 बजे सो
0: अब रहे हैं। उल्टा हो रहा है मामला, क्योंकि अब लोगों को घोड़े बेचकर सोने की आदत नहीं बल्कि नींद से जूझने की आदत पड़ गई है, और ये नींद से जूझने वाली जो बात है गाने में भी प्रयुक्त हुई है। देखते हैं इस गाने में क्या है। फिल्म है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।

0: अब मंजरी जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारीकर से मिलने

0: उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
1: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात ये है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
2: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
1: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
2: जी है। जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहाँ उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
1: ओके।
2: और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे गाना, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: अरे अरे।
2: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर और पूरी रात हम गाना गाते थे। और सुबह 4 बजे उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 बजे से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, उनको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया, वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज। एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
1: ऑडिशन से मिली थी?
2: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी।
1: ओहो हो।
2: हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
1: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
2: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का। एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वही पे स्कोर किया।
1: क्या बात है।
2: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था। एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
1: यू हैव टू सिंग।
2: ओके। আমি লাশময়ী তোমার চোখে

0: তোমার নয়, তোমার নয়, তোমার নয়।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। तो इस फिल्म ने बहुत नाम दिया।
0: हाँ।
1: और एक्सपीरियंसेस किस तरह से रहे कि इंटरनेशनल टीम के साथ काम करने के?
0: इंटरनेशनल टीम के साथ, क्योंकि योगन योगस जो हमारे सिनेमाटोग्राफर थे वो विम वेंडर्स की फिल्म
1: टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: यस, सो एक एक नाम ऐसे आ रहे थे तो हमें लग रहा था माय गॉड हम लोग ऐसे लोगों के साथ, और पहला ब्रेक होता है। उसके बाद जब फिल्म बन गई और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हम लोग ट्रैवल हुए, वो पहला एक्सपीरियंस था। टोरंटो से शुरू हुआ, फिर हम बर्लिन आ ले गए, और बर्लिन में हम बड़े स्टार्स से मिले, मतलब कियानो रीव्स। तो वो मतलब बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस।
1: चार पांच धड़कन मिस।
0: हाँ, बिल्कुल। टोटल। और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। अच्छा, वो पहली पिक्चर थी जहां हम लोगों को इतना मतलब वो मिला था। पैसे भी अच्छे मिले थे, लेकिन तभी भी स्ट्रगल पीरियड था। तो बर्लिन आले जब होती है ना, बहुत ठंड होती है वहां, -10। मेरे पास एक ही कोट था, कपड़े भी ठीक ढंग से नहीं थे, एक साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट और कोट भी, मतलब वहां जाके मुझे फ्लोरियन ने और एक कोट मतलब दिया, एक विंटर कोट, की दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि मेरे पास दिल्ली की ठंड वाली कोट थी।
1: बिल्कुल,
0: इंडिया में वैसे कोट्स मिलते ही नहीं थे, वो तो बाद में ब्रिकलेन करने के बाद जब मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी, देन आई अंडरस्टूड व्हाट विंटर कोट्स आर।
1: क्या एक्सपीरियंस था वो।
0: हाँ, मतलब बूट्स भी नहीं थे, चप्पल और सॉक्स पहन के गए थे बर्लिन आले अटेंड करने। और मिल रहे किसे, कियानो रीव्स। पर ये
1: तो मजा है,
0: बहुत ही कमाल। और मेरे को एक्टर प्रशांत नारायणन वो भी आए थे, और हम लोगों को रिट्स कार्लटन में ठहराया गया था, तो हम तो पागल हो गए थे, मतलब लाइक द होटल इज सो ऑप्यूलेंट,
1: ग्रैंड,
0: या बट thankfully later in life this became a norm in life, like many more films happened like this, jahan matlab bahut travel maine kiya, jury mein bhi rahi, aur ye dheere dheere ye part of life ban gayi.
1: Bilkul bilkul, lekin ye jo
0: this is the beginning. Yeah,
1: yes, bilkul. Lekin iske baad international films aur unme awards lene aur tareef paane ka silsila lagatar chalta raha.
0: Ji,
1: to iske baad kaun si film aayi?
0: इसके बाद मैंने यहाँ 12 आना किया, मतलब इंडिया में एक फिल्म की,
1: मेनन के साथ,
0: राजा मेनन के साथ ही किया एक, और फिर ब्रिकलेन हैपेंड। फिर कुछ दिन, कुछ साल मुझे बहुत अच्छी फिल्में नहीं मिल रही थी, फिर भी देख इंडियन सर्कस करके एक फिल्म की मैंने उस समय, और उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत काम मिल रहा था, ऐसा
1: उस
0: नहीं।
1: उस दौरान एक बांग्ला फिल्म भी की,
0: बिबौर। हाँ, बांग्ला बिबौर भी की। फिर मुझे ब्रिकलेन मिला, और एक फ्रेंच फिल्म भी की थी मैंने, लेट द विंड ब्लो, हवा आने दे करके। फिर ब्रिकलेन के बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई कुछ साल के लिए।
1: ये डिसीजन किस चीज पर बेस्ड था?
0: ये एक्चुअली वहां से कुछ अच्छे काम मिल रहे थे इसलिए था, और मैंने शादी भी कर ली। ये भी था।
1: हाँ,
0: प्यार हो गया। ये भी था, दोनों चीजें थी। और मैंने वहां पे म्यूजिकल थिएटर भी किया, बहुत बड़ा वेस्ट एंड पे, यू नो, रॉयल ऑपरा हाउस में, जॉसलिन पुक, जिन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में म्यूजिक दिया, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे इस म्यूजिकल के, तो बहुत मजा आया काम करके। और फिर
1: क्या फर्क है इंडियन थिएटर की दुनिया और ब्रॉडवे की दुनिया में?
0: द थिंग इज, इंडिया में हमें थिएटर, मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर जैसे प्रोफेशनल थिएटर है, लाइक प्रोफेशनली चलती है वो, लेकिन हिंदी थिएटर में प्रोफेशनल थिएटर एक रेपुटरी कंपनी या ऐसे छोड़ के नहीं है। तो प्रोफेशनल लिज्म जो है, क्योंकि जहां आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे अपनी जिंदगी बिताने के लिए, कि आप सिर्फ

0: थिएटर कर रहे हो, वो नहीं होता यहाँ। तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी क्वालिटी जो है वो सफ़र करेगी। क्योंकि अभी मैं एक प्ले कर रही हूँ जो मैंने और शारिब हाशमी हम दोनों ने मिलके लिखा, पर क्या होता है कि हमें जब फ्री वक्त मिलता है तभी हम वो कर पाते हैं, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिलते हैं इससे, ये हॉबी हो जाती है। जबकि हम अपने पूरे मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: तो इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।

0: मतलब अब हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर भी उसको एक लेवल के प्रोफेशनलिज्म तक ला पाते हैं, बट नो वन इज फंडिंग अस।
1: इसके सहारे जिंदगी नहीं बिताई जा सकती।
0: या तो उसमें फर्क हो जाता है। अभी जब मैं वहां पे प्ले कर रही थी तो हम जो 8 वीक्स का रिहर्सल कर रहे थे, हमें बाकायदा फुल पेमेंट मिलता था उसका, वीकली मनी, विच यूज टू बी वेरी गुड। उसके बाद शोज जब कर रहे हैं तो हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उस समय। तो अगर ऐसा हो तो मैं तो जिंदगी भर थिएटर ही करूं,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज आपको लाइव परफॉर्मेंस में जो मजा आता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो फिल्म में नहीं मिलता है।
1: ऑफ कोर्स।
0: बट द थिंग इज वी ऑलवेज हैव टू बैलेंस इट, बिकॉज वो है ही नहीं।
1: तो लंदन में थिएटर होता रहा,
0: हाँ
1: अलग-अलग प्रोडक्शंस में काम
0: यस
1: किया।
0: किया। और यहाँ पे भी मैंने पोस्टकार्ड्स फ्रॉम गॉड करके एक बहुत बढ़िया प्रोडक्शन किया दक्षा शेट और उनके डांस कंपनी के साथ, इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्तियाज धारकर्स पोएम्स, और म्यूजिकल ही था वो।
1: वाह वाह,
0: इट
1: क्या बात है।
0: वाज फैंटास्टिक। तो ऐसी ऐसी चीजें करती गई मैं, बट ब्रिक लेन चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स।
1: एवरीथिंग,
0: या
1: यस। मुझे ये बताइए कि लंदन में रहते हुए और कौन कौन सी फिल्में भी हुई?
0: फिल्में भी हुई, मैंने देव बेनेगल के साथ रोड मूवी की, मतलब यहाँ आना जाना आना जाना। फिर और एक फिल्म की थी मॉनसून शूट आउट करके, जिसमें नवाज और मैं हैं, गुनीत ने प्रोड्यूस किया था उसको, बॉम्बे समर करके एक अमेरिकन डायरेक्टर के साथ एक फिल्म की। सो ऐसी चीजें मैं करती गई।
1: और लंदन का ये जो प्रवास है, ये कब और कैसे खत्म हुआ?
0: धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमिक वहां पे स्टैग्नेशन आ रही थी ना, 2009-10, ये दैट वाज लाइक यू नो जो उनका स्टॉक मार्केट पूरा गिर गया, लीमन ब्रदर्स वगैरह सब क्रैश हो गए। सो वर्क वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट देयर। आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क हियर ओनली।
1: अच्छा,
0: तो मतलब जैसे देव बेनेगल की फिल्म है, मैं रह वहां रही थी पर यहाँ काम कर रही थी काफी सारा। सारी फिल्में इंटरनेशनल टाइप की थी बट आई वॉज डूइंग वर्क हियर। तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा बिताया जाए,
1: तो आप वहां से वापस आ गई।
0: वापस आ। और
1: और
0: एक चीज थी, मैंने पहले ही कहा था मुझे ठंड पसंद नहीं। सो द वेदर वाज गेटिंग ऑन टू माय नर्व्स, वेदर आई लाइक इट और नॉट।
1: ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जो है मुंबई आपका घर हो गया।
0: जी,
1: अब भोपाल वाली फिल्म तभी हुई?
0: भोपाल वाली फिल्म भी लंदन में रहते हुए ही हुई, क्योंकि
1: अच्छा।
0: वो भी वहीं का प्रोडक्शन था। या रवि कुमार जो डायरेक्टर थे,
1: जी
0: ही इज ब्रिटिश।
1: ओके।
0: या
1: उस फिल्म में अभय आपके साथ थे?
0: नहीं, भोपाल प्रेयर फॉर रेन में मैं और राजपाल यादव थे, और
1: ओके।
0: मार्टिन शीन, कार्ल पेन, ये
1: अच्छा,
0: सब
1: हाँ
0: वो
1: वो दूसरी,
0: इंटरनेशनल फिल्म
1: करेक्ट
0: थी।
1: करेक्ट।
0: या या
1: जी जी जी
0: या
1: बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा था?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि मतलब डॉक्टर थे एक्चुअली, और उनकी ये पहली फिल्म थी।
1: अच्छा,
0: और
1: और एक ट्रेजेडी होने वाली है, उसके इर्द गिर्द
0: हाँ
1: बुनी
0: उसकी
1: गई फिल्म।
0: हाँ। फिर मैंने अन्ना कारेनिन भी किया उस समय, व्हेन आई वाज इन लंदन, जो राइट के साथ, मतलब तो काफी सारा वहां इधर दोनों का काम कर रही थी।
1: बिल्कुल मजेदार है ये। मुझे लगता है कि यहां भी एक गाना सुनते हैं, फिर आगे
0: बिल्कुल
1: की बात करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अब बताइए कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है?
0: मुझे नूर जहान के गाने जो हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा,
1: क्या बात है, उन्हीं ने गाया है। आवाज दे कहाँ है,
0: बिल्कुल
1: वो भी सुना जा
0: वो
1: सकता
0: भी, हाँ हाँ वो भी सुना जा सकता है।

0: इन तमाम फिल्मों की बात हो रही है, इस बीच में मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने आई लव न्यू ईयर जैसी फिल्म भी की,
1: जी
0: मीना की, सिद्धार्थ की, ये सारे इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी कहा जा सकता है। क्या बम्बैया चमक दमक वाले सिनेमा ने आपको आकर्षित नहीं किया?
1: आई लव एन वाई, सनी देओल और कंगना रनावत है उसमें,
0: वो एक फिल्म थी, यस
1: वो
0: यस।
1: मेन स्ट्रीम फिल्म ही थी। और सो आई प्ले हिज फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड आई डंप हिम,
0: अरे
1: सो आई हैड द
0: वाह,
1: प्लेजर ऑफ डंपिंग सनी देओल ऑन
0: डबिंग द मेन हीरो, क्या बात है, मजे
1: स्क्रीन।
0: की बात है।
1: हाँ नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सिद्धार्थ बहुत ही, मतलब रिची मेहता जिन्होंने दिल्ली क्राइम डायरेक्ट की, उनकी फिल्म थी। और बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर हैं वो, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। ये सब फिल्में की मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं करना चाहती थी, लेकिन ऐसा ही काम आता रहा मेरे पास। और मुझे लगता है कि ये ऐसा, आप हमेशा टाइप कास्ट हो जाते हो ना, कि आपको स्लॉट में ढाला जाता है कि आपने ऐसा काम किया है तो आप ऐसे ही हो। स्पेशली आप अगर ड्रामा स्कूल से हो तो लोग ये समझते हैं कि आप अगर अच्छे एक्टर हो तो आप मेन स्ट्रीम काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है।
0: एक सील ठप्पा, एक टाइप
1: हाँ
0: कास्ट वाला मामला
1: हाँ बट
0: होता है।
1: ऐसा नहीं होता है, यू नो, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। बट दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, पार्च्ड की मैंने,
0: हाँ,
1: पार्च्ड
0: मैं
1: जो
0: बस उसी की तरफ आ
1: या
0: रहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म आपके करियर की है
1: हाँ
0: पार्च, जो
1: पार्च्ड,
0: महिलाओं की जिंदगी पर एक तरह से कहा जाना
1: यस।
0: चाहिए।
1: और पार्च्ड वाज एक्चुअली अ स्टोरी दैट आई हैड रिटन
0: अरे
1: इनिशियली,
0: वाह,
1: यस।
0: ये तो कमाल की बात है, ये मुझे नहीं पता था,
1: हाँ
0: वाह।
1: मैंने ये लिखा था। और मैंने एक दिन, हम लोग मिले थे लीना और असीम, और हम सोच रहे थे कुछ करे कुछ करे, तो मैंने लीना को ये कहानी सुनाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि यार इसको बनाते हैं, मैंने कहा बनाओ मैं दे देती हूँ तुमको। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। देन आई टुक हर टू दैट प्लेस जहां से मुझे सोर्स मिला था उस कहानी का, एंड देन शी डिड हर रिसर्च एंड शी रोट द स्क्रीन प्ले, और ऐसे करके बनी वो।
0: वो एक शानदार फिल्म बनी।
1: हाँ वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल इसलिए भी है कि द जर्म ऑफ द आइडिया केम फ्रॉम मी। और
0: इसकी शूट से जुड़ी हुई कुछ बातें।
1: हाँ, तो उसके बाद राधिका आप्टे, सुरवीन चावला, इन सब की कास्टिंग हुई, एंड वी हैड लाइक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम, यू नो, शूटिंग दिस।

0: टुगेदर, बॉन्डिंग, एंड हमने साथ में बनाई इस फिल्म को. यू नो वी ऑल गॉट टुगेदर एंड मेड द फिल्म. रसल कार्पेंटर, जिन्होंने टाइटैनिक शूट किया है, ही इज अ सिनेमाटोग्राफर ऑफ एवटार्स एंड टाइटैनिक, ऐसे बड़े बड़े फिल्मों ही शॉट द फिल्म. और ये असीम बजाज की वजह से है,
1: हु
0: इज आवर प्रोड्यूसर, और लीना के पार्टनर भी हैं वो. सो असीम इज रियली इनक्रेडिबल प्रोड्यूसर. वो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आए,
1: वाह,
0: एक छोटी फिल्म जो है उसका विजन बड़ा हो गया,
1: बड़ा हो गया, और फिल्म बात भी बड़ी करती
0: बड़ी,
1: है.
0: हाँ.
1: और इसलिए वो बहुत दूर तक पहुंची.
0: यस, एंड लीना टुक दैट लिटिल स्टोरी दैट आई हैड, वो उसको वहां तक लेके चली गई.
1: वाह,
0: यू नो, सो इट वाज रियली फैंटास्टिक. एंड आल्सो वर्किंग विद सच अमेजिंग एक्टर्स, सब लोग बिंदास खुल के हम लोगों ने काम किया.
1: बिल्कुल सही है. जोरम के बारे में बात कीजिए, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है.
0: हाँ, तो अगेन देवाशीष मखीजा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे उसका काम, सिर्फ काम ही पसंद नहीं है, मुझे वो इंसान बहुत पसंद है.
1: वाह,
0: ही इज अनअपोलोजेटिक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आर्टिस्ट.
1: बिल्कुल,
0: जो
1: अपनी तरह की फिल्में करनी है
0: आज की तारीख में आपको बहुत कम मिलती है. और मैं इसलिए देवाशीष को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मानती हूँ. तो जब जोरम वो कास्ट कर रहा था, तो मैं एक्चुअली आबूधाबी में थी. आई वॉज शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड येल्लो बस, और वो भी एक इंटरनेशनल फिल्म है, अमेरिकन डायरेक्टर की फिल्म है. तो देवाशीष ने कहा मुझे कि मेल ड्रिवन फिल्म है, बट आई वॉन्ट यू बिकॉज दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड आई वॉन्ट समबडी हु विल जस्ट बी एफर्टलेस. मैंने कहा मैं कुछ नहीं पूछूंगी, मैं कर रही हूँ.
1: वाह,
0: दैट्स ऑल.
1: क्या बात है. और जोरम ने काफी नाम कमाया, काफी चर्चा बटोरी देवाशीष की तमाम फिल्मों की तरह.
0: बिल्कुल कमाल. और मुझे मनोज के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा. जीशान मेरा जूनियर है और बहुत अच्छा एक्टर है, तो इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने में बहुत बहुत मजा आया. एंड मनोज भी बहुत अच्छे इंसान है.
1: बिल्कुल,
0: यू नो ही इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. एक्टर तो सबको पता ही है वो है.
1: बिल्कुल. तो ये आपकी जो फिल्मोग्राफी है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बन जाती है. मुझे गौरी हरी दास्तान का नाम भी आपकी फिल्मोग्राफी में दिखता है, और मुझे लगता है कि इस फिल्म की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि अनंत बहुत अलग तरह से फिल्में बनाते हैं.
0: अनंत जी के साथ मैंने 4 फिल्में की है.
1: हाँ बिल्कुल, पीछे
0: मैंने गौर हरी दास्तान से शुरू की, वो जर्नी जो है गौर हरी दास्तान से शुरू हुई. फिर रफ बुक करके मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ, और वो काफी साल तक थी, अभी शायद वो हटाई गई है.
1: अच्छा.
0: पे थी वो, और उसको थिएट्रिकल रिलीज भी विवेक वासवानी ने प्रोड्यूस किया था. वो एजुकेशन सिस्टम पे था, वहां पे मैंने एक फिजिक्स टीचर का किरदार निभाया था. और एक्चुअली रफ बुक में मैंने अपने आप को कास्ट कर लिया था.
1: अच्छा,
0: आनंद जी के ऑफिस में मैं उनसे मिलने गई थी, उन्होंने कहा मैं रफ बुक करके एक फिल्म लिख रहा हूँ. तो यू नो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ फिजिक्स टीचर एंड ही डज दिस एंड ही, एंड व्हाई कांट इट बी अ शी. Because he was actually offering me a role in the film, but not the central character.
1: Right.
0: So he said okay. और मैं Dallas जा रही थी next day किसी और film के लिए. When I came back, he said कि okay, these are your dates and you come. And yeah, now it's not he, it's she. I was like okay.
1: Wow, wow.
0: Wonderful.
1: क्या बात है.
0: देन उसके बाद मैंने डॉक्टर रखमाबाई,
1: वो भी उनके साथ ही,
0: उनके साथ
1: जिसका जिक्र हमने अभी पीछे किया.
0: बिल्कुल,
1: देश की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर,
0: देश की प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर.
1: जी हाँ,
0: वो की मैंने. और उसमें तो बहुत ही, मतलब इट वाज अ हार्ट, क्योंकि ये जर्नी थी उसकी. और आई हैड टू लर्न ऑल्सो मराठी फॉर दैट. पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब मुझे बेस्ट एक्ट्रेस मिला, तो वहां लोगों को लगा कि मैं तो पुणे चा मुलगी हूँ.
1: क्या बात है.
0: और मुझसे ऑडियंस ने आके मराठी में बातचीत करना शुरू किया, एंड आई वॉज लाइक कंफ्यूज, कि मैंने कहा मैंने उतना ही सीखा
1: जो वहां दिख रहा है.
0: वहां दिख रहा है, एंड इट वॉज ओल्ड मराठी ऑल्सो.
1: यस,
0: इट्स नॉट द बोलचाल मराठी दैट इज बींग स्पोकन नाउ. अपनी बेटी को मैं ये जरूर कहती हूँ कि प्लीज आप मराठी सीखो, यू नो, बिकॉज यू आर स्टडिंग मराठी इन स्कूल, तो आपको सीखना है, और आप बिल्कुल सीखो, अच्छे से सीखो.
1: क्या बात है. तो 3 फिल्मों की बात हुई ना अनंत महादेवन के साथ.
0: अभी पास्ट टेंस करके और एक फिल्म अभी मैंने उनके साथ अभी खत्म की है.
1: क्या बात है, एक ही डायरेक्टर के साथ 4 फिल्में.
0: हाँ, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मजा आता है. वो

0: जो हमेशा बहुत ही अलग अलग चूज करके लाते हैं, मतलब दे आर सो, तो पास्ट टेंस में परेश, और स्टोरी टेलर भी की, फिफ्थ, यस,
1: लीजिए, एक फिल्म तो छूटी गई थी.
0: आई हैव डन स्टोरी टेलर ऑल्सो विद आनंद जी.
1: क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एंग्री इंडियन गॉडेस भी आपके करियर की एक इंपॉर्टेंट फिल्म है, और
0: बिल्कुल
1: बहुत फेस्टिवल्स में इस फिल्म ने अपना झंडा लहराया
0: जी
1: है.
0: जी जी जी एंग्री इंडियन गॉडेस एक्चुअली पूरा इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है, और वो बहुत ही कमाल का प्रोसेस था उसमें, क्योंकि वहाँ पैन नलिन जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, ऑल दी एक्सेप्ट फॉर माई कैरेक्टर, एवरीबडी ऑल्सो डिवेलप देयर ओन कैरेक्टर्स. मैं एक्चुअली और एक फिल्म शूट कर रही थी उस समय विकास मिश्रा की, इसलिए मेरे पास डेट्स नहीं था, दैट्स वाई आई हैड टू आई ज्वाइन दैट प्रोसेस लेटर. तो इसलिए मुझे नलिन ने कहा कि आई हैव टू गिव यू अ कैरेक्टर वेर यू हैव टू फिट इन एंड रिजॉल्व द थिंग्स नाउ, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, देव गॉन थ्रू द 20 डेज वर्कशॉप विच आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ, आई कुडंट बी, जबकि मैं, मतलब इट वॉज अ थिंग दैट आई ऑलवेज फील अ लिटिल कि यू नो आई वॉज देयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, और वो एंड
1: लेकिन
0: वक्त
1: फिर
0: पे
1: बीच में
0: यहाँ
1: चीजें
0: डेटा ऐसे हो
1: दूसरी.
0: गया. एनी वे, सो इट वॉज लाइक कंप्लीटली डिवाइज्ड, एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि उस समय निर्भया का केस हुआ था 1 साल पहले, और सब लोग हिले हुए थे कि जिस ढंग का वायलेंस देखा गया, जिस ढंग की, मतलब, कॉन्वर्सेशंस पब्लिक में आई, यू नो, एवरीथिंग वाज, सो द फिल्म केम आउट ऑफ दैट. सो इट्स अ पर्सनल फिल्म फॉर ऑल ऑफ अस, एंग्री इंडियन गॉडेसेस.
1: वाह, बिल्कुल. और उस फिल्म को अपना प्रॉपर ड्यू मिला, उसका काफी नाम हुआ उस फिल्म का. यहां भी एक गाना सुनते हैं,
0: बिल्कुल.
1: कौन सा गाना होगा?
0: इस समय मुझे लगता है स्वानंद किरकिरे, मेरा दोस्त भी है और मेरे प्ले में उसने गाना लिखा भी है, बट
1: वाह,
0: उसका जो, मतलब, मेरा फेवरेट गाना बावरा मन, हो
1: हमने
0: सकता
1: अब तक स्वानंद की आवाज में सुना है, अब
0: हाँ
1: हम तनिष्ठा की आवाज में सुनना चाहते हैं.
0: स्वानंद माफ कर दे पर ये एनएसजी में जब हम थे ना, वो तब से गाता था
1: तब से
0: ये.
1: गाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल.

0: अब बातचीत को हमें उस मोड़ पर ले जाना होगा जहां आपकी जिंदगी अचानक एक दिन पूरी तरह से बदल गई। वो क्या था और वो कैसे सामने आया?
1: मैं फुल प्लेट शूट कर रही थी। फुल प्लेट की जर्नी बहुत मुश्किल रही क्योंकि प्री प्रोडक्शन में आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम और इट जस्ट मतलब उस समय मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिल्म क्यों बना रही हूँ, मैं कर क्यों रही हूँ ये। और मेरे असिस्टेंट्स और मेरा पूरा टीम बहुत वरिड था कि ये बना भी पाएगी कि नहीं। एक पॉइंट पे मैंने सोचा था कि नहीं अभी नहीं कर सकते, बट देन माई प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि तनिष्ठा एडवांसेस जा चुके हैं, यू नो द होल टीम वॉज वर्किंग, वो उनके सैलरीज नहीं आएंगी, इफ़ यू कैन आई अंडरस्टैंड बट सो आई सेड ओके ओके गिव मी सम टाइम एंड देन विल। तो उसके बाद काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई फिल्म में, मतलब वाइल वी वर शूटिंग इट, सो इट वॉज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। और फिर फिल्म ख़त्म हुई, शूटिंग ख़त्म हुई तो मुझे दूसरे और एक को प्रोड्यूसर को लाना पड़ा टू फिनिश द फिल्म। इट वॉज इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। फिर जब वो हुआ और हमने एडिट ख़त्म की, मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब लग रही थी एंड आई हैड जस्ट रैंडमली गॉन टू माई गायनोकोलॉजिस्ट टू डू सम चेकअप्स, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। और वहाँ उन्होंने मतलब स्क्रीनिंग और इन सब के बाद कहा कि मुझे स्टेज 4 मेटास्टेटिक कैंसर है।
0: लेकिन इसके कोई लक्षण पहले कहीं नजर नहीं आया, आप काम करती रही लगातार।
1: तो इतना फैल गया था मेरा कैंसर मेरे बॉडी में
0: और उसने कोई संकेत नहीं दिए?
1: मतलब संकेत अभी मुझे लगता है कि शायद दिए, लेकिन वो ऐसा कुछ मतलब नहीं था, यू नो दैट इट इज। सो आई वॉज लाइक ये कैसे हो सकता है,
0: बिल्कुल
1: यू नो, एंड इट वॉज अनरियल। और इट वॉज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स बैक आई लॉस्ट माई फादर टू
0: द सेम थिंग।
1: या इट वॉज ही हैड क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया CML। सो आई डिडंट नो हाउ वुड आई टेल माई मदर।
0: ओ गॉड।
1: तो मैं रिपोर्ट्स जो है हर दिन एक पॉजिटिव रिपोर्ट निकलता था, मतलब आपके लिए वो नेगेटिव है उस समय कि हर एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, एवरी रिपोर्ट इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ये भी। तो मैं रिपोर्ट्स गाड़ी में रखती थी और फिर ऊपर आई हैड 9-year-old, अभी वो 10 साल की, 9 साल की थी डॉटर एंड अ मदर हु हैड लॉस्ट हर हस्बैंड जस्ट लाइक यू नो ईयर बैक एंड आई डिडंट नो हाउ टू टेल हर। बट ऑब्वियसली आई हैड टू टेल हर एट सम पॉइंट। मेरी बहन न्यूयॉर्क में रहती है, मैं उसके साथ बात कर रही थी और मेरे कुछ एक बहुत अजीज दोस्त है दिल्ली में, वो मेरे स्पिरिचुअल गुरु भी है, वैसे दोस्त है बट ही इज सच अ काम एंड अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो मैंने मतलब आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड आई वॉज टॉकिंग टू दीज टू पीपल। मेरी बहन ने मुझे सबसे पहले ये कहा कि दीदी आई विल कम बट यू कान डू दिस अलोन, आई एम टू फार अवे, यू आर इन टू मच ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मेरी बेटी के लिए एक माँ है सिर्फ और कोई नहीं है। मेरी मम्मी के लिए भी मैं ही सपोर्ट सिस्टम हूँ नाउ दैट माई डैड इज नॉट देयर। इमोशनली प्रैक्टिकली फाइनेंशियली देर इज नोबडी एल्स, सो हाउ वुड आई डू दिस and the expenses of my treatment is obnoxiously high.
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Initially insurance also refused my claim.
0: Kyun?
1: Wo unke bahut hi gande funde hote hain, uske andar main ja hi nahi rahi hu, and I had to fight and fight and fight with the insurance.
0: Aap jeeti?
1: Yes.
0: Mm-hmm.
1: But the thing is there were too many battles. You know, isme main heal kaise hu, because it's also about healing and I was coming and the stress of the film.
0: वो तो रखा ही हुआ था।
1: तो it was just I had reached the rock bottom the day the insurance claim got rejected. मेरा अगले हफ्ते कीमोथेरेपी शुरू और मेरा इंश्योरेंस का मैंने जो पेपर वर्क करके दिया था, जो मांगा था मैंने सब कुछ दिया उनको, उन्होंने फिर भी मुझे मैसेज आया कि your insurance claim has been rejected. That day I really hit the rock bottom कि यार इसके आगे अब अच्छा ही होगा, इससे बुरा और क्या होगा।
0: बिल्कुल।
1: But my sister told me कि नहीं तुमको अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा। You have to tell your friends, नहीं तो if not now then when, वो सिर्फ पार्टी करने के लिए है क्या? That's when I reached out. मेरा एक girl gang है। मैंने सबसे पहले उनको बताया।
0: वो लोग कौन हैं?
1: शबाना जी हमारी गैंग की लीडर है
0: इसीलिए तो मैंने नाम पूछे हैं।
1: और उसमें दिया है, दिव्या है, तन्वी है, कोंकणा है, विद्या है, शहाना है, संध्या मृदुल है, उर्मिला मतोंडकर है, दिस वाज आवर गर्ल गैंग, ऋचा चड्ढा है। तो ये इन्होंने मुझे, एक्चुअली ऋचा ने मुझे डॉक्टर का मतलब रेफरेंस दिया जिनके पास मैं गई फाइनली। शबाना जी आके मेरे मम्मी से मिलके, यू नो जावेद साहब शबाना मतलब टर्न बाय टर्न घर आए थे, उनको जो मतलब हौसला दिया, दैट रियली सॉर्ट ऑफ मेड माय मदर्स लाइफ इजियर, कि उनको लगा कि नहीं अकेली नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं, संजय सूरी है, ओनीर है, मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं दीप्ति गुप्ता जो सिनेमाटोग्राफर हैं, और मतलब उसका तो मैं क्या कहूँ कि रात के 2 बजे भी उसको फोन करो तो वो आ जाती है।
0: गजब।
1: हाँ, अनुराधा शेट्टी है, सब बहुत सारे और भी दोस्त हैं जो सब टर्न्स लेने लग गए मेरे हॉस्पिटल के साथ। एंड तो ये जर्नी फिर ऐसा लगा कि प्यार और मोहब्बत से ना सब कुछ जीता जा सकता है। मेरा जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रीटमेंट खत्म हुआ, अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, आई एम स्टिल ऑन अ टारगेट मेडिसिन, मुझे
0: हर 1.5 साल बीत चुका है।
1: हाँ, 21 दिन बाद मुझे अभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है मेरे टारगेट मेडिसिन के लिए। बट जो मेन मतलब कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन, इन सब के बाद मैंने एक पोस्ट लिखा था फेसबुक पे, और मुझे यही उस समय एहसास हुआ दैट हम लोग मतलब सब चीज रोबोट्स के थ्रू रिप्लेस करने जा रहे हैं, AI, बट इट इज एक्चुअली जस्ट द टच ऑफ अ रियल ह्यूमन बीइंग विच हील्स एवरीथिंग। और मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि अगर तुम पॉजिटिव रहोगे, माइंड डाइवर्टेड रहेगा, एंड इफ यू बिलीव दैट यू विल बी ओके, देन यू विल बी ओके।
0: ये कितना मुश्किल था।
1: ये मुश्किल नहीं था बिकॉज मेरे पास ये सपोर्ट था, और मेरी बहन आई थी, मेरी बहन मेरी बेटी को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके गई कुछ महीने के लिए जब मेरा कीमो चल रहा था। एटलीस्ट 1 पर्सन इज टेकन केयर ऑफ। मैंने बोला था मेरी मम्मी को भी लेके जाओ, दोनों को ले जाओ तुम, पर मम्मी ने रिफ्यूज किया कि मैं तुमको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई थिंक दैट्स द थिंग दैट ये सपोर्ट, और फिर मैंने कीमोथेरेपी के दौरान इसी वजह से आई कुड फिनिश माई फिल्म, आई स्टार्टेड राइटिंग अ प्ले कॉल्ड ब्रेस्ट ऑफ लक।
0: प्ले का आइडिया जो शुरू होता है, ये वाली कहानी बताइए।
1: ये शारिस
0: पूरे दौर से आप
1: बिल्कुल जिस दिन

0: फर्स्ट मेरा रिपोर्ट आया था, मैं शारिब से मिलने वाली थी, और मैंने सोचा मैं मिल क्यों रही हूँ उससे, और मैंने सोचा था कैंसिल करूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार मिलती हूँ क्योंकि माइंड
1: डाइवर्ट
0: डाइवर्ट
1: होगा।
0: जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मैं उसको बताऊंगी कैसा रिपोर्ट में आया है, पर मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, एंड आई ब्रोक डाउन। उसने मुझे अपनी पत्नी नसरीन से बात करवाया फोन पे, बिकॉज शी हैड गॉन थ्रू माउथ
1: वेरी
0: कैंसर,
1: डिफिकल्ट
0: ये
1: टाइम।
0: वेरी डिफिकल्ट। शी गेव मी अ लॉट ऑफ होप, और मैंने जैसे फोन रखा, मैंने शाहरुख को अभी लिखते हैं, हम
1: वाह
0: इसी इसी के
1: वाह
0: बारे में लिखते हैं।
1: क्या बात है।
0: एंड इमेजिन दैट वॉज इवन बिफोर आई हैड स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। तो दैट इवनिंग वॉज इनक्रेडिबल, क्योंकि हमारा और एक दोस्त इंद्रनील, जो भी मेरे फिल्म में है, वो भी आया हमसे मिलने, और दैट वॉज द लास्ट इवनिंग। भाई एक तरफ से रो रहे हैं, दूसरी तरफ से मजाक कर रहे हैं कि अरे यार क्या है,
1: देख लेंगे।
0: मेरा ही बॉडी है ना, मैं ही बॉडी को कहूंगी कि अब ठीक हो जा, अपने ही सेल्स हैं विच हैव गॉन रूग, इट्स अप टू मी इफ आई कैन हील। ये मतलब इट जस्ट वेंट बैक एंड फोर्थ लाइक दैट, एंड दैट्स द डे मतलब शारिब को मैंने बताया कि यार यही इसी सब्जेक्ट पे करते हैं हम अपना प्ले। फिर मेरा कीमो शुरू हुआ तो मैंने लिखना शुरू किया, और जब एक ढांचा लिख लिया था मैंने, फिर शारिब और मैं मतलब हम लोग जैम करते गए और उसको आगे बढ़ाते गए, डायलॉग्स पे काम करना शुरू किया, और लास्ट कीमो साइकिल पे मैंने शारिब को बुलाया अपने कीमो हॉस्पिटल में, और वहां से एक बहुत ही कॉन्क्रीट शेप लेना शुरू किया प्ले ने।
1: क्या बात है। और इस पूरी जर्नी के दौरान वो आपने प्ले कंप्लीट भी कर लिया।
0: यस, हमने शोज भी किए अब
1: पहला
0: तो
1: शो कब कहाँ हुआ था?
0: पहला शो G5A में फरवरी एंड में हुआ,
1: जी।
0: उसके बाद हम काला घोड़ा फेस्टिवल में हम लोगों ने परफॉर्म किया, लखनऊ में किया, और अभी 24 मई को रंगशीला में हमारा परफॉर्मेंस है, और फिर आगे और भी करेंगे शोज।
1: यहां एक गाने की जगह बनाई जाए,
0: हाँ
1: सुनते हैं।

0: जो तो हसाए
1: इस शो को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और जो लोग इस पूरे दौर से इस मुश्किल से गुजर चुके हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इससे?
2: तो ब्रेस्ट ऑफ लक को बहुत ही बढ़िया रिस्पांस, मतलब वी कुडंट थिंक सर्वाइवर से और ऑन्कोलॉजिस्ट से और आम जनता हर तरीके के ऑडियंस से बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसे मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट भी आए थे देखने और लखनऊ में बहुत फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट आए थे और उन लोगों ने भी यही कहा कि ये प्ले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि कॉन्वर्सेशंस अराउंड कैंसर एंड अराउंड ब्रेस्ट कैंसर अराउंड द फैक्ट दैट स्क्रीनिंग आप चाहे कितनी भी हेल्दी हो आपको क्या कब हिट करती है आप नहीं कह सकते और ये चीज हम प्ले के तहत कहना चाह रहे हैं कि और इमोशनली कह रहे हैं क्योंकि वो एक एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हमने एक कहानी कही है। पर स्क्रीनिंग करवाना अगर आप 40 के हिट कर गए हो एज अ वुमन आज की तारीख में मैमोग्राफी करवाना टेस्ट्स करवाना ये बहुत जरूरी है। इवन इफ यू आर हेल्दी आपको पता नहीं है मैंने ये नहीं की ये गलती की मैंने क्योंकि मुझे लगा मैं तो फिट हूँ मुझे कुछ नहीं है मैं बहुत हेल्दी लाइफ लिव करती हूँ। सो बट यू जस्ट नेवर नो ये जो म्यूटेशंस क्यों होती है आज तक साइंस को नहीं मालूम। तो हम लोग बहुत सारे चर्चे करते रहते हैं कि अरे आयुर्वेदा कर लो या ये कर लो वो कर लो। हाँ उन सब चीजों से क्या होता है कि आपका जनरल हेल्थ अच्छा होता है तो प्रोग्नोसिस सबका अच्छा होता है लेकिन दैट डजंट गारंटी एनीथिंग। ये म्यूटेशंस क्यों होता है वी रियली डोंट नो साइंस डजंट नो इट और आपको चीजों को साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू ही एनालाइज करना पड़ेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे ही आपकी जिंदगी आपको जीनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल इस तरह की जब लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती हैं तो करेज कायम रखना अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस कायम रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज अ सर्वाइवर इतने सारे लोग जो इन चीजों से इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं उनको आप अपने अनुभव से क्या कहना चाहेंगे?
2: पहला तो ये कि मैं अपने आप को अभी भी सर्वाइवर कह सकती हूँ कि नहीं मुझे नहीं मालूम बट मैं ये मानती हूँ कि आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ बातचीत कर रही हूँ आज मैं अपने फिल्म को लेकर दुनिया भर ट्रैवल कर रही हूँ अपना प्ले कर रही हूँ अपनी जिंदगी जी रही हूँ अपनी बेटी को पृथ्वी में वर्कशॉप करवाने ले जा रही हूँ। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड दैट्स ऑल आई कैन डू एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप यही कर सकते हो और हियर एंड नाउ कल का तो हमने ना तो आपको पता है ना मुझे ये रियलाइजेशन मुझे हमेशा से था बट अब तो मतलब ये इंटरनल है वी रियली डोंट नो मतलब मैं एक दिन पूरा एक आई वाज एब्सोल्युटली फाइन द वेरी नेक्स्ट डे आई हैड अ टर्मिनल इलनेस। हाउ बिजार इज दैट। मेरे दोस्तों को जब पता चला वो सब ये कहने लगे कि टैन मतलब यू नो क्योंकि आई डोंट ड्रिंक आई डोंट स्मोक आई एम नॉट दैट यू नो सिगरेट मैंने आज तक जिंदगी हाथ नहीं लगाया आई ईट हेल्दी आई हैव ऑलवेज बीन फिट। मेरा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है रिप्रोडक्टिव कैंसर्स का मेरा ब्राका टेस्ट नेगेटिव है विच इज सपोज टू बी द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ इट। सो हाउ देन यू जस्ट नेवर नो। तो आप वही पंडित रविशंकर ने जो कहा था ना कि जा हवा तह दे आप अपनी जिंदगी जियो इस वक्त हियर एंड नाउ। मैं जब कीमोथेरेपी पे जाती थी मैं दोस्तों को बुला लेती थी वहां हमारे अड्डे चलते थे वहां कोई पोएट्री पढ़ रहा है कोई म्यूजिक सुना रहा है और चुटकुले मतलब ये ताकि वो वक्त निकल जाए। ट्रीटमेंट का जो पेन है बाल झड़ रहे थे मैंने शेव करवा

0: वो भी पब्लिक को दिखाया properly.
1: Yes.
0: कि yes, I am going through this.
1: Yes, I lost a lot of weight. I mean, that's a part of my life. I am an artist and I experienced it. I'm experiencing different things and I will express myself through those experiences. और हम यही करते हैं और यही कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. तरीशा, क्या कुछ future plans जैसी कोई चीज होती है life में, वो आपने कुछ कर रखा है कि अभी कल का क्या करना है?
1: नहीं. मत कल का सिर्फ पता है क्योंकि मैं परसों दिल्ली जा रही हूँ. फुल प्लेट की स्क्रीनिंग है वहाँ हैबिटेट सेंटर में.
0: तो क्या अगले प्ले की कोई प्लानिंग है?
1: कुछ चीजें लिख रही हूँ लेकिन वो कब आएगी कब होगा ये पता नहीं है. बट आई एम राइटिंग सर्टेन थिंग्स. फिल्म भी लिख रही हूँ, प्ले भी लिख रही हूँ.
0: तो एक्टिंग चलने वाली है या अभी आप डायरेक्टर हो गई है?
1: नहीं नहीं, एक्टिंग तो बिल्कुल चलने वाली है. अभी बेस्ट ऑफ लक में तो मैं एक्टिंग ही कर रही हूँ. हमने लिखा है, हम एक्टिंग कर रहे हैं. मैंने एक्चुअली लीना को रिक्वेस्ट किया कि आप डायरेक्ट कर दो. सो शी हैज डायरेक्टेड इट.
0: ओके, वाओ, बढ़िया बात है. तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप प्ले या फिल्म या लिखना ये कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उस बीच में क्या चल रहा होता है?
1: हाँ, क्रिएटिव लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है. फिर मैं स्विमिंग कर रही हूँ आजकल, मजा आ रहा है. तो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द पूल, थोड़ा वहाँ रिलैक्स भी हो जाते हैं. बेटी भी सीख रही है, स्विमिंग सीख रही है. देन आई स्पेंड टाइम विद हर. खाना बनाने में मुझे मजा आता है और आजकल थोड़ा सा मुझे अपनी डाइट पे भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है तो मैं खुद अपना कुछ बना लेती हूँ.
0: क्या बनाती
1: है? हाँ, मैं बोलूंगी ना आपको हार्ट अटैक आ जाएगा. मेरा खाना आजकल जो हो रहा है. मम्मी कहती कि अच्छे इसको बुला दो, उसको बुला. मैंने कहा कि घर पे लोग बुलाएंगे खिलाएंगे क्या, क्योंकि क्यूजिन तो ये बन रहा है मेरी वजह से. अभी मेरी बेटी भी जो है वो हेल्दी सुन सुन के, उसका एक चैप्टर है साइंस में अबाउट फूड एंड विटामिन्स, उसको सब एफर्टलेसली आता है. इतना सुन चुकी है वो कि इस खाने में क्या विटामिन है, क्या खाने से क्या डेफिशिएंसी होगी.
0: राइट राइट, शी इज एन एक्सपर्ट
1: नाउ.
0: बिल्कुल,
1: वो एक्चुअली मुझे टेस्ट करने लगती है. अभी मम्मी पता है क्या कहेगी, ये देखो ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, इसमें पता है ये विटामिन है, वो मिनरल्स है, ये मिलेगा.
0: पहले ही बोल देती है. क्या बात. तनिषा, बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे फिर कभी बैठेंगे और फिर इसी तरह से बातें करेंगे.
1: बिल्कुल. और जाते जाते एक गाना
0: जरूर.
1: जीवन से भरी तेरी आंखें
0: मजबूर करे जीने सफर, फिल्म का ये गाना. इस गाने को इंदीवर ने लिखा है और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जैन जी हैं.

0: परीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडेंट आने के लिए।
1: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया चीजें शेयर करने में, एक्चुअली यहाँ आने में। और जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ, सर और
0: जरूर आए, स्वागत है।
2: अभी आप सुन रहे थे अनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा

Я сохраню.

के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसके गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह

बजट पे जाए चलेगा। विषय रहेगा बच्चों में अनिमिया और थैलेसीमिया से जुड़े समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब।

दोस्तों अभी आपने सुना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज में। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत। कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में हम साथ साथ हैं फिल्म से।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत। कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: श्रोताओ, आपको मालूम है ना, कल FM लाइफलाइन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का दिन है। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। कल बाद दोपहर 3:30 से लेकर 4 तक हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।
0: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलो दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षा प्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
0: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जोनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी

0: चर्चा कम होती है।
1: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
0: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
0: जी श्रोताओ, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातू नामक गांव में हुआ था, जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
1: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
0: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो, वे शिक्षित हों और उनका शोषण न हो। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़े स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी तो श्रोताओ, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओ, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओ, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था? 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्यपुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहां आपको हमारी पाठ्यपुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रोलेट बिल।
1: रोलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़े कौंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई, लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई। पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया जो रोलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे, पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो, हमारा

प्रदेश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: दर्दन बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर पिछलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए।
1: इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

이렇게 썸낸 날려간 개수 인만 쫓아다니는 꼬리에서 뻥다루 노오오 부채에서 배탈 먹게 까인 줄 알까나

0: इंतजार। जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गई और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
1: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए भाइयों और बहनों,

0: تاکہ ہماری مانگیں فوراً پوری کی جا سکے۔
1: ہماری مانگیں پوری کر۔

सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे का कॉर्नर जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थी और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाना जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपने खून बंधे के ताने

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरे ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: ये सब काफी है।

0: रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजते हुए पहुंची।
1: Oh, my God.

0: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई,
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा, और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डायर। यस सर। आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नीडेड?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था।
4: वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
4: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने

0: ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
2: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
3: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
4: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
5: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें अब ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
3: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
2: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांति प्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: शिक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊँ, जैसे ही मैं खेलने जाऊँगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छह एक कम छह,
3: छह एक कम छह,
2: छह दुनी बारह,
3: छह दुनी बारह।
4: राहुल खेले नहीं आ रहे।
2: अरे यार तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छे ती अठारह,
3: छे ती अठारह,
2: छे चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूँ, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये

0: तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
2: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
3: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
2: करता है पर पहाड़ा।
3: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें?
2: फिर पहाड़ा कब?
3: देख मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
2: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
3: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
2: पक्का?
3: पक्का।
2: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
3: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
2: हाँ सच, तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
3: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
4: तो श्रोताओ, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद प्रस्ताव करा रहे थे

0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ।

0: 8667 पर और पाइल से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओं, आपको मालूम है ना, कल FM लाइफलाइन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का दिन है। बिल्कुल सही। और इस प्रोग्राम में इस बार हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर दीपक बंसल, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी PGI चंडीगढ़। विषय रहेगा बच्चों में अनीमिया और थैलेसीमिया से जुड़ी समस्याएं। इससे जुड़े आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, तो उठाइए ना अपना फोन, डायल कीजिए हमारे नंबर्स। कल बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਲੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:10 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 6:10 ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तुरंत प्राथमिकी न दर्ज करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को तलब किया। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की दिशा में सशस्त्र बलों के साथ निरंतर तालमेल पर बल दिया। आज हरियाणा में विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष ने सभी से सदैव राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने और भाईचारे को मजबूत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग के आयुक्त अतुल कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अतिरिक्त महेंद्रगढ़ जिले का प्रभारी नियुक्त किया। और आज देश भर में सावन माह की शिवरात्रि मनाई जा रही है। श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिव मंदिरों में जल अभिषेक किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश आयु या लिंग का विचार किए बिना सभी पर लागू होता है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मैक्सिम सैनी से चंडीगढ़ में उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक में सिविल मिलिट्री तालमेल को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह सहित सेना मुख्यालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार

0: और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान पश्चिमी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह सहित सेना मुख्यालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार एवं अन्य अवसर सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार तथा सशस्त्र बलों के बीच निरंतर तालमेल पर बल दिया। बैठक में आंतरिक सुरक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण, अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर, पूर्व सैनिकों के कल्याण, आवास परियोजनाओं, आत्मनिर्भरता की दिशा में पहल तथा परिचालन तैयारियों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैयारियों एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तथा इनके प्रभाव को न्यूनतम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान भारतीय सेना में सेवारत हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की गई। आज जींद में सिद्धपीठ जयंती देवी मंदिर से रानी तालाब तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होकर लोगों ने राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना का संदेश दिया। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मीणा ने कहा कि देशभर में निकाली जा रही तिरंगा यात्राएं जन जन में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने का प्रभावी माध्यम बनी है। उन्होंने सभी से सदैव राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र का सम्मान करने तथा देश की एकता, अखंडता एवं भाईचारे को मजबूत बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। श्री कृष्ण मीणा ने कहा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर भारत के विभाजन का दंश झेलने वाले लोगों को याद किया जाएगा।
1: जिस प्रकार से 1947 का गदर हुआ था, उस गदर के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोग शहीद हुए, उनके सम्मान में देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख को विभाजन विभाषिका का कार्यक्रम करने का काम किया, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे सके, जिनका नाम कहीं पर भी किसी भी किताब में किसी भी तथ्य में नहीं आता।
0: हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पलवल के राजकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक रंगोली तैयार की गई। इसके अलावा पोस्टर मेकिंग एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने भारतीय तिरंगा, राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता दिवस तथा हर घर तिरंगा अभियान जैसे विषयों पर आकर्षक पोस्टर एवं पेंटिंग तैयार की। अपनी कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से विद्यार्थियों ने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया। कालका के राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी यूनिट द्वारा आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पूरे उत्साह एवं देशभक्ति की भावना के साथ तिरंगा मार्च का आयोजन किया गया। तिरंगा मार्च का आयोजन महाविद्यालय की एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट डॉ. गुरप्रीत कौर एवं केयर टेकर ऑफिसर कुशल वर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। मार्च में एनसीसी कैडेट्स ने बड़ी संख्या में भाग लिया और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र गौरव का संदेश दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव अतुल कुमार को

संदेश यात्रा में शामिल होकर क्षेत्रवासियों के साथ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति समर्पण का संदेश देंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों से तिरंगा यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

जीआई उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुमशुदा

समाज के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, उसमें अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आज क्या आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म के गाने के साथ सुखविंदर सिंह और ए आर रहमान की आवाजों में ए आर रहमान का संगीत।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

शान फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में गाना आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार की आवाज में सनम तेरी कसम, इस फिल्म से। गुलशन बाबरा के बोल संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आ रहे हैं विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में

कार्यक्रम का अगला गाना साजन चले ससुराल फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV/AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला। लम्हे फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाजों में। शिवहरी का म्यूजिक है और बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से।

0: जी आंख बचाए गर्दन झुकाए और रास्ते से कतराते हुए तशरीफ का टोकरा कहाँ लिए जा रहे हैं? अजी मैंने कहा नमस्ते, अजी आपसे ही नमस्ते कर रहा हूँ मुंशी जी।
1: ओ शर्मा जी हैं, माफ करना शर्मा जी, जरा बस यूं ही को जल्दी में था। लीजिए मैं आपको डबल नमस्ते कर देता हूँ। कहिए सब खैरियत से तो है?
0: जी हाँ जी हाँ।
1: अच्छा वो फिर मिलूंगा, आज तो जरा जल्दी में हूँ वरना आपसे कुछ गपशप हो ही जाती।
0: अजी मुंशी जी आज तो ना जाने किधर सूरज निकला जो आपके दर्शन हो गए, वरना आपके दर्शन ही कब होते हैं।
1: अजी मेरे दर्शन, क्या बात कह दी शर्मा जी ने, हाय हाय हाय हाय मजा आ गया भाई। अजी शर्मा जी आप जब भी हुक्म करेंगे बंदा हाजिर हो जाएगा, पर माफ करना इस वक्त तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगा।
0: अगर ऐसा ही होता मुंशी जी तो मुझे आपके घर के सैकड़ों चक्कर ना काटने पड़ते।
1: शर्मा जी गुस्ताखी माफ हो, आप गरीब खाने पर कदम रंजा फरमाते ही कब है, है? आप तशरीफ लाएं और मैं ना मिलूं, भला ये कैसे हो सकता है? शर्मा जी जरा इत्तला बर कर देना कि शर्मा साहब की सवारी आ रही है, मैं तो आपकी राह में आके बिछा दूं आके, कभी इस खिदमत का मौका तो देकर देखिए। खैर आज तो जरा जल्दी में हूँ, ज्यादा कुछ बातचीत कर नहीं सकता, फिर मिलूंगा।
0: मुंशी जी मीठी मीठी बातें बनाकर आगे को कदम मत बढ़ाइए, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, कहीं आज चला जाने दिया फिर आप मुझे कयामत तक नहीं मिल सकते। रुकिए मुंशी जी,
1: ये आपका वाला प्रेमी तो है कि आप मेरा कुर्ता पकड़कर मुझे रोक रहे हैं।

0: अगर आपकी भाभी घर में उपवास किए ना बैठी होती और मुझे उसके लिए बाजार से फल फलहारी लेने ना जाना होता तो मैं जरूर रुक जाता। अच्छा अच्छा मंजी, अच्छा आप कुर्ता तो छोड़ दीजिए, फिर मिलूंगा।
1: नहीं मंजी, कुर्ता तो मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता। आप मेरा रुपया सीधे तरह से देते हैं कि नहीं? अब तक बहुत झांसे दे चुके, अब मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं।
0: अरे शर्मा जी, अब आप ये क्या मजाक करने लगे?
1: अभी तो रुपया लिए 2 वर्ष हुए और आप उसे मजाक बताने लगे। कहीं 10-20 वर्ष हो जाते तब तो आप मुझे पहचानते ही नहीं। जाना चाहते हो तो मेरा रुपया निकालना रख दीजिए।
0: अरे अरे शर्मा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो मेरा मलमल का कुर्ता ही पार डाला वाला। ये आपकी भाभी की पसंद का कुर्ता था, जिसे उसने बेचारी ने बड़े शौक से बनाया था। अब आपके भाभी बिचारी क्या कहेगी, जरा सोचो तो।
1: चल, चोरी का गुलाम कहीं का, मेरा पैसा देता कि नहीं?
0: अरे शर्मा जी, आप क्या कुछ नशा पानी भी करने लगे हैं? हैं? ऐसी लाल आंखें तो पहले कभी नहीं देखी थी।
1: मेरी तो आंखें ही लाल हैं, मैं आपका मुंह तक लाल कर दूंगा मुंशी जी। कहिए क्या कहते हो, रुपया दे रहा हूँ?
0: ये रुपया रुपया आप क्या लगा के हैं शर्मा जी, कुछ पता भी तो चले। मैं तो अभी तक मजाक ही समझ रहा था, लेकिन मालूम होता है इस समय आप कुछ गंभीर भी हैं।
1: अजी वही 200 रुपया जो आपने मुझसे लिया था, और कौन सा? तो मैं सूद ब्याज के 250 से भी ऊपर बैठेंगे। कहिए अभी याद दिला दूं?
0: अरे नहीं नहीं नहीं शर्मा जी, रास्ते में याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेन देन सब किताबों से ही तो चलता है। आदमी भूल कर सकता है, मगर किताबें तो भूल नहीं कर सकती। आपका निकले तो आप लें और मेरा निकले तो मुझे दें। ये तो सीधा सा महाजनी सिद्धांत है। आपको जब भी और जिस दिन भी फुर्सत मिले ना, मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आना, बस सब साफ हो जाएगा। अच्छा अभी तो इजाजत दीजिए, मेरा
1: आपका हिसाब और मेरे ऊपर। मुझसे अपना हिसाब तो अभी ले लीजिए मुंशी जी।
2: मैं आपका हिसाब अभी पाई बताई भी बता दीजिए।
0: शर्मा जी, ये क्या आपने तो मेरा गला ही दबा दिया।
2: और ये आप
0: अरे आप तो मुझे चपाती आने भी लगे। शर्मा जी आप क्या बहुत पी गए हैं? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो मरकर सीधे स्वर्ग जाऊंगा, आपको ना रत्या लगेगी। ये क्या कर रहे हैं आप?
1: अगर मेरा रुपया ना निकाला तो मैं आपकी जान निकाल लूंगा।
0: तो आप मुझे मार कर कौन सा शेर मारेंगे? एक शरीफ आदमी की हत्या का दाग कयामत तक नहीं छूटेगा। मैं कहता हूँ अब भी कहरियत है।
1: कहरियत तो अपनी अपनी घरवाली की मनाइए, जो मेरे आने पर आपको कहीं छिपा देती है और कह देती है मुंशी जी घर में नहीं है। छिप छिप कर 2 वर्ष गुजार दिए, रुपया देने का नाम ही नहीं लिया। निकाल निकाल मेरा रुपया, वरना मैं मार मार कर उल्लू बना दूंगा, उल्लू बना दूंगा सब मुंशी की तेरी। निकाल निकाल।
0: अच्छा अच्छा, तो अब आप गाड़ियों पर भी उतर आए हैं? मैं कह देता हूँ मैं 1 मिनट में आपकी 32 ही निकाल कर बात करूंगा। मुझे आपकी जवानी पर तरस आता है, अगर ऐसा ना होता तो आप तक कफन उड़ाकर हमेशा के लिए सुला दिया होता।
1: बहुत देखे तेरे जैसे सुलाने वाले
0: मैंने। आप राज नहीं कर रहे हैं, राज नहीं लगते भी जाने लगे। मैं कहता हूँ खून हो जाएगा, खून है
1: ये। खून क्या लगा? डेढ़ पसली का आदमी और शेख ही मार रहे हैं। तूने कितने खून किए? 4 पाई के खटमल मारे होंगे, खटमल देख।
0: अरे बचाओ कोई, ये मेरा पैसा छीन रहा है,
1: खून है, लूट रहा
0: है। अरे बचाओ,
3: यहाँ राजनीति हो रही है।
1: अजी तुम अपने रास्ते जाओ, ये आपस की लड़ाई है, पुलिस आकर मेरा क्या बिगाड़ेगी? निकाल निकाल रुपया।
0: अजी श्रीमान जी, ओ श्रीमान जी, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये मुझे लूट रहा है, ये डाकू है।
3: अरे हवलदार साहब, अरे जरा दौड़ के आइए ना, यहाँ राजनीति हो रही है, जल्दी आइए।
2: छोड़ो मत, मत जाने दो।
0: हाय मडला, हाय मडला,
2: हाय मडला,
0: मुझे लूट लिया इस डाकू ने।
1: ये शख्स झूठ बोलता है, ये मेरा कर्जदार है, मुझे मत पकड़िए।
4: क्या हवलदार, पत्र की सीटी क्यों बजाई?
3: ये आदमी राजनी कर रहा था, इस रास्तेगीर ने इसे पकड़ लिया।
1: क्या?
4: ओ, तब तो ये जुर्म बहुत संगीन है।
1: जुर्म?
4: कुछ दिनों से इस इलाके में राजनी की बहुत वारदात हो रही है।
1: जी,
4: मैं थाने ले चलो।
0: मैं लूट गया। अगर श्रीमान जी ने इन्हें रंगे हाथों ना पकड़ लिया होता तो इस डाकू ने तो मुझे मार ही डाला होता।
1: चीफ साहब, ये आदमी झूठ बोलता है, ये मेरा रुपया हड़पना चाहता है। मैं इससे अपना रुपया मांग रहा था और ये दे नहीं रहा था।
4: हाँ हाँ, हर मुल्जिम पकड़ लिए जाने पर अपने आप को बेकसूर बताता है।
1: जी,

0: पर राहज नहीं कर रहे थे?
1: जी नहीं, नहीं, नहीं।
0: सीधे से हथकड़ियां पहनो और थाने चलो। तुमने क्या देखा और क्या सुना?
2: चीफ साहब, मुलजिम अब आपके कब्जे में है, आप अपनी कार्रवाई करें और मुझे जाने दें। मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि ये आदमी इसकी छाती पर सवार था, मार रहा था, पैसे मांग रहा था और ये चिल्ला रहा था।
0: क्या चिल्ला रहा था?
2: हाय मर गया,
3: मर गया,
2: हाय लुट गया,
3: लुट गया,
2: दौड़ना
3: दौड़ना,
2: बचाना
3: बचाना।
2: ये सब कहकर जब ये चिल्लाया तो मैंने पुलिस पुलिस पुकारा और इसे भागने के पहले ही पकड़ लिया। थोड़ी देर में हवलदार साहब आ गए और उसके बाद आप।
4: जी हुजूर, ठीक ऐसा ही हुआ। मैंने खतरे की सीटी बजाई और मुलजिम को पकड़ लिया। ये श्रीमान तो रास्तागीर है, इन्हें अब जाने दिया जाए।
0: ठीक है हवलदार जी, इनका नाम और पता लिख लो ताकि मुकदमे में इन्हें फिर बुलाया जा सके। अब इनका यहाँ कोई काम नहीं है। चलो नाम बताओ। बताओ,
3: मैं श्रीमान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी जान बचा ली, वरना वरना हाय इसने तो मुझे जान ही से मार डाला होता।
0: तूने और कहाँ कहाँ राजनी की है? अपना नाम और पता मुझे बता और मिश्रा थाने चल।
1: चीफ साहब, मैं राजन नहीं महाजन जरूर हूँ, इसी लखनऊ शहर के हजरतगंज में रहता हूँ। मेरा नाम नेकी राम शर्मा है, ये मेरा कर्जदार है और आज तक वापस नहीं दिया इसने।
3: ओजोर, देखा देखा ये कितना झूठ बोलता है। जब राजन ही करते रंगे हाथों पकड़ लिया गया तो मेरा महाजन बन गया। हुजूर, ये महाजन वाजन कुछ नहीं, डाकू है हुजूर, डाकू। ये मेरा रुपया छीन रहा था, इसने मुझे मारा और मेरी औरत का खास पसंद का नया मलमल का कुर्ता भी फाड़ डाला। राजन ही के साथ साथ इस पर कत्ल का मुकदमा भी चलाया जाए हुजूर, कत्ल का। गवाही देने के लिए अभी तो मैं जिंदा हूँ हुजूर।
0: आपने अपना नाम पता तो बताया ही नहीं।
3: मुझे लोग मुंशी कृपा शंकर के नाम से पुकारते हैं। मेरा गरीब खाना डालनगंज में है। इसे राजनी करते हुए तो आपने रंगे हाथों पकड़ ही लिया। रुपया छीनने के साथ साथ ये मुझे कत्ल भी तो कर रहा था।
1: चीफ साहब, आप इसकी बातों में विश्वास न करें, ये बहुत चालाक और छूटा है। मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, इसकी औरत मेरी भाभी है।
3: गजब सरकार, गजब। देखा, पहले इस डाकू ने कहा कि वो मेरा महाजन है, अब कह रहा है कि वो मेरी औरत का देवर है, यानी मेरी औरत उसकी भाभी है। अभी क्या सरकार, थोड़ी देर में ये मेरी औरत का भाई बनकर अपने को मेरा साला होने का दावा भी पेश करेगा। जब रंगे हाथ पकड़ लिया गया तो रिश्तेदार बन गया।
0: हवलदार जी, हुजूर, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है।
4: जी मुझे भी। ये शर्मा इन मुंशी जी को आम सड़क पर पीट रहा था।
1: ये क्या?
4: उसका पैसा छीन रहा था। इसका इतना ही जुर्म काफी है। इस जुर्म में इसे कम से कम 2 साल की सजा और 500 रुपए जुर्माना हो सकता है।
1: जुर्माना?
4: इसे थाने ले जाओ और मुंशी जी को घर जाने दो।
1: चीफ साहब, मैं अपने कसूर की माफी चाहता हूँ।
3: हुजूर, आप इसे हरगिज माफ ना करें। आज तो इसने मुझे अधमरा ही छोड़ दिया, आपके मिला तो पूरा ही मार देगा। ये मेरा कातिल है, कातिल। अगर ये मुझे पूरी तरह कत्ल ना भी कर सका तो क्या हुआ? आपके आने तक मैं आधा तो कत्ल हो ही चुका था। अगर आपके आने में थोड़ी बहुत देर और हो जाती तो क्या ये मुझे पूरी तरह कत्ल नहीं कर डालता?
0: ठीक है। क्या है राधा शर्मा जी?
1: जी
0: मुंशी जी तुम्हारे ऊपर राहजनी के साथ कत्ल का केस भी चलाना चाहते हैं।
1: वो श्रीमान जी, आप कहें तो मैं आपसे माफी मांग लूं।
0: मतलब?
1: यानी मेरा मतलब है मुंशी जी से माफी मांग लूं। उन्हें लिखकर दे दूं कि आइंदा मैं उनसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा।
0: क्यों मुंशी जी, अब आप शर्मा जी को छोटे घर भेजना चाहते हैं या बड़े घर भेजना चाहते हैं?
3: हुजूर, अगर शर्मा जी मेरे कुर्ते की कीमत देकर ये लिखकर आपके सामने दें कि मुंशी कृपा शंकर के साथ अब हमारा किसी तरह का लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है, और ये कि आज मैंने मुंशी जी के साथ जो झगड़ा किया उसकी मैं माफी चाहता हूँ, इसके बाद आप इन्हें जहाँ आपका जी चाहे भेज दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा।
1: ठीक है श्रीमान जी, मैंने अपराध किया है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुंशी जी को उनके कुर्ते की कीमत भी दिए देता हूँ और लिखकर भी दे देता हूँ कि अब उनके साथ मेरा कोई लेन देन या झगड़ा बाकी नहीं है। अब आप मुझे बड़े घर ना भेज कर छोटे घर पर ही भेज दें, बीवी बच्चे सब राह देख रहे होंगे।
0: अच्छी बात है शर्मा जी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मुंशी जी को अपना माफीनामा लिख के दे दो।
1: जी हाँ।
0: मैं भी तुम्हें अब की बार माफ करता हूँ, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि आइंदा अगर तुमने किसी किस्म का झगड़ा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, समझे?
1: अभी लिख के देता हूँ, अभी लिख के देता हूँ।
0: लीजिए मुंशी जी, यह रहा शर्मा जी का माफीनामा।

0: आप दोनों जा सकते हो
1: जी, जी।
0: मगर चीफ साहब की चेतावनी मत भूल जाना।
1: जी बिल्कुल नहीं,
0: याद रखोगे ना?
1: हुजूर, मुझे मेरे कुर्ते की कीमत भी मिल गई और शर्मा जी का माफीनामा भी मिल गया।
2: लुट गया।
1: मैं चीफ साहब और हवलदार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम दोनों का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शर्मा जी, आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर मेरी औरत को अपनी भाभी बना लें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा शर्मा जी, अभी तो आपकी भाभी जी के लिए फल लेने बाजार जा रहा हूँ, वो उपवास की बैठी राह देखती होगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। नमस्ते, फिर मिलूंगा।
2: बिल्कुल लुट गया। कुर्ते की कीमत और ऊपर से माफीनामा, ओह बिल्कुल लुट गया, बिल्कुल लुट गया। ठीक है, मैं भी फिर मिलूंगा।

0: अपनी भाभी बना लें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा शर्मा जी, अभी तो आपकी भाभी जी के लिए फल लेने बाजार जा रहा हूँ, वो उपवास किए बैठी राह देखती होगी, अभी जरा जल्दी में हूँ। नमस्ते, फिर मिलूंगा।
1: मार सके बिल्कुल लुट गया, कुर्ते की कीमत और ऊपर से माफीनामा, ओह बिल्कुल लुट गया, बिल्कुल लुट गया। ठीक है, मैं भी फिर मिलूंगा।
2: आप सुन रहे थे मेवाराम गुप्त की लिखी नाटिका फिर मिलूंगा। निर्देशक थे पुरुषोत्तम दार्भेकर। आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रस्तुति।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नीति मोहन, विशाल ददलानी, के और शंकर महादेवन, इनकी आवाजों के साथ हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से, इरशाद कामिल के बोल। इस गाने को कवि से तैयार किया है विशाल शेखर ने।

राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव। सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
2: पहला,

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रही हैं विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डर।

रुख फिल्म से आप सुन रहे थे बाबू मन की आवाज में ही गाना, कुमार के बोल प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं बागी 3 इस फिल्म से, निकिता गांधी की आवाज में, तनिष्क बागची के बोल और संगीत।

0: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
2: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
1: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2000

0: 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
3: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
4: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
5: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
5: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
0: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है।

0: उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
1: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब

उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविद भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हलचल फिल्म के इस गाने के साथ, उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में समीर के बोल विद्यासागर का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए दस्तक फिल्म से। जावेद अख्तर के बोल राजेश रोशन का संगीत और आवाज है उदित नारायण की।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम्।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

बेताली फिल्म से आप सुन रहे हैं श्रेया घोषाल और शेखर रजवानी की आवाज में गाना, विशाल ददलानी के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रेया घोषाल और शेखर रवजियानी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं तुम बिन फिल्म से, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में, फैज अनवर के बोल, निखिल विनय का संगीत।

लक्ष्मी अय्यर और राघव संचार की आवाज में आप सुन रहे हैं 1 2 3 इस फिल्म से गाना। आदित्य धर के बोल और म्यूजिक है राघव संचार का।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको

0: HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें। सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें। नई सुई का ही प्रयोग करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: कैसे बना ये गाना?
3: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोले क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
2: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
3: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है? हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: सुनील शेट्टी 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक मैंगलोर के मुल्की तालुका में जन्मे। तुलु भाषी बंट परिवार के सदस्य सुनील शेट्टी अंक शास्त्र में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए उन्होंने उसी के अनुसार अपने नाम की स्पेलिंग्स में भी फेर बदल किया है।
1: तुम तक

1992 में फिल्म बलवान से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी को जब दर्शकों ने देखा तो उनमें सभी को एक ही मैन नजर आया।

जैसे जैसे सुनील फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाते चले गए, वैसे वैसे उनके अभिनय में भी निखार आता गया। इसी से उत्साहित होकर सुनील ने कॉमेडी रोल किया अपनी दोहरी भूमिका वाली फिल्म गोपी किशन में। सुनील शेट्टी के दमदार अभिनय को फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा। उनके नेगेटिव रोल के लिए फिल्म धड़का

इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया 2001 में, और 2009 में सुनील शेट्टी को साउथ एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म रेड अलर्ट के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया।

0: तो दोस्तों ये था अभिनेता सुनील शेट्टी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। आप सुन रहे थे अमरकांत के साथ, प्रस्तुति सहयोग PKA नायर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर विजय दीपक छिब्बर। अब अमरकांत को दीजिए इजाजत, नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसे तू हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। इस दुनिया में अगर शब्द ना होते तो हम कैसे करते अपनी मोहब्बत का इजहार? शायद तब आंखें खत लिखती, मुस्कानें दस्तखत करती और खामोशियां हर अनकही बात का अर्थ बन जाती। शायद किसी का ठहर जाना, किसी के लिए किसी का लौट लौट कर देखना ही प्रेम का सबसे सच्चा वादा होता है।

0: तेरे मी।
1: मोहब्बत शब्दों की मोहताज नहीं होती, वो तो दिल की भाषा है, जिसे महसूस किया जाता है, कहा नहीं जाता। शब्द तो बस उसे आवाज देते हैं, वरना प्रेम तो हर धड़कन में चुपचाप अपना नाम लिखता रहता है। प्रेम के सफे पर कभी इंतजार की घड़ी होती है, कभी बेकरारी, कभी मुस्कान के मन के। गजब है मोहब्बत की दास्तां।

कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का नाम या परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। वे चुपचाप मन के देहरे पर आकर ठहर जाते हैं। रोज की सहज मुलाकात, मुस्कान में घुले कुछ मधुर बातें और मौन में धड़कते अनकहे एहसास धीरे धीरे मन के आंगन में एक ऐसा अपनापन रच देते हैं जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि

दिल की अनुभूति से पहचाना जाता है। तब लगता है कुछ लोग जीवन में केवल मिलने नहीं आते, वे महज एक एहसास बनकर आते हैं।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। वक्त की सीढ़ी पर कतरा कतरा लम्हे गुजर रहे हैं, इंतजार की बोझिल घड़ियां ठिठक गई हैं, दिल ख्यालों से बहलने को राजी नहीं, सारे गम भुलाने की कोशिश में दिल गुनगुना रहा है तन्हाई और इंतजार का नगमा। रात के सितार पर उदासी और इंतजार की स्वर लहरियां बज रही हैं एक साथ।

उस रोज गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, उस रोज से इंतजार का चिराग जल रहा है। अधूरा मिलन, अधूरी चाहत, अधूरा ही पूरे होने की आस जगाता है। इंतजार की आरजू कभी खत्म नहीं होती। उनकी आवाज सुनकर सुबह होती है, शाम उन्हीं की उम्मीद से रोशन होती है। धूप उनकी मुस्कुराहट से खिलती है, प्यार का रंग निखरता है उनके नाम से।

पलकों पर ठहरा है समंदर, बूंदे बहुत ढेर सारी, जज्बात की लहरों से दिल बेचैन है, जगमगाते सितारे थककर सो गए हैं, आसमान का रंग नीले से सिलेटी हो चला है, धरती सन्नाटे की चादर ओढ़े किसी आहट का इंतजार कर रही है, वो अपने गम के शामियाने पर मोहब्बत के फूल काट रही है और गा रही है इंतजार का ये नगमा।

0: तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था, और फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोला था, और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।
1: वो हम

0: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रतंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो डर मरे।

0: ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ।
1: एड्स एच आई वी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एच आई वी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एच आई वी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਪਕਾਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ।
1: हिमाचल के खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास
2: HP TDC के प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
0: प्रोग्राम का अगला गीत हर्षदीप कौर की आवाज़ स्विच।

0: HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: ਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ। 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि

0: सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। 11:05 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 5:55 ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੈ ਹਿੰਦ।